0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: लोग कहते हैं कि पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। मैं कहता हूं कि ईश्वर पर विश्वास रखो, बुरा वक्त कभी नहीं आएगा। ये कहना है अज्ञात का। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम। हमें भगवद गीता एक बहुत सुंदर बात बताती है। वह हमें बताती है कि जिस प्रकार से एक गांव में बहुत सारे कुएं होते हैं, किसी कुएं में कपड़े धोते हैं, किसी में हम स्नान करते हैं, परंतु इन सारे कुओं का जो कार्य है एक नदी पूर्ण कर देती है। उसी प्रकार से अगर हम अपने जीवन में बहुत सारे लक्ष्यों को एक साथ लेकर चलेंगे तो हम भी इसी प्रकार से अलग अलग कुओं में जाना पड़ेगा, लेकिन अगर जीवन में एक लक्ष्य बनाकर उस पर पूरे फोकस से कार्य करें तो आप उसको बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए फोकस होना जीवन में बहुत आवश्यक है। हरे कृष्णा।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। भगवत गीता हमें एक बहुत सुंदर बात बताती है कि हमारे जीवन में तनाव आता क्यों है और उससे बच कैसे सकते हैं। तनाव हमारे जीवन में इसलिए आता है क्योंकि हम अपनी प्रकृति के विरुद्ध कार्य करने का प्रयास में लगे रहते हैं। जैसे कि एक मछली से आप कहेंगे पेड़ पे चढ़ जाओ तो उसकी प्रकृति नहीं है। इसीलिए अगर आप प्रकृति के विरुद्ध कार्य करेंगे तो आपके जीवन में तनाव बढ़ेगा, डिप्रेशन एंग्जाइटी बढ़ता चला जाएगा। परंतु जैसे ही आप अपनी प्रकृति में यानी स्वयं को जानें और उसके अनुसार अगर अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करें तो आप तनाव से पूर्ण रूप से मुक्त होकर भी कार्य कर सकते हैं। कितना कार्य? जितना चाहे आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप खुश हैं तो आप हमेशा अपने कार्य को 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे नहीं, जितना चाहे कर सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।
2: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को, सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सब सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नियत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा और काशी है।

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
1: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

हर कोई कहता है कि ईश्वर नजर नहीं आता, लेकिन सच तो यह है कि संकट के समय कोई साथ नहीं देता, तब किसी न किसी रूप में भगवान ही साथ देता है। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुषा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: Film making एक creative field है और यदि आप creative सोचते हैं तो ये field आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें Sharda University के Sharda School of Media, Film and Entertainment Department में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: The world is here.
4: राम राम दोस्त, राम सत श्री अकाल आदाब। मैं हूं नाचीज हरदिल अजीज गगन, वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की मैं कोशिश करता हूं अपने इस खास प्रोग्राम के माध्यम से जिसका नाम है बिंदास सुबह, बिंदास बोल, बिंदास बातें। जनाब, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, अपने दिल की बातें मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो दिल में दबा कर मत रखिएगा, फटाफट एक छोटा सा कॉल कर मुझे बता सकते हैं अपने हालचाल, शहर के हालचाल, पड़ोसियों के हालचाल। नंबर है वही जाना पहचाना सुना सुनाया जो अक्सर बारंबार हम आपको बताते रहते हैं। चलिए एक बार पुनः बता 0120406025 अर्थात हिंदी में 120-40-60-205 पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा 90.8fm@sharda.ac.in पर आप हमें मेल कर सकते हैं और मेल के माध्यम से मेल जोल बढ़ा सकते हैं। ये तो रही संपर्क सूत्र की बात, यानी कि इसके जरिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। क्या है खास इसके बारे में, मैं आपको थोड़ा सा इशारा कर देता हूँ। जाहिर सी बात है कि कहते हैं ना कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। अगर आपके पास कुछ हुनर है, उस हुनर को आप आगे लेकर जाना चाहते हैं और अच्छे दोस्त हैं, अच्छे टीचर हैं, तो निश्चित तौर पर सब कुछ अच्छा होगा, बेहतर होगा। ऐसी खास एक टैलेंट मेरे साथ जुड़ने जा रहा है जो कि शारदा यूनिवर्सिटी का है, उसके बारे में बातें करेंगे जरूर, मगर एक छोटे से अंतराल के बाद। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। भाई ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपको इशारा किया था कि आज मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ स्टूडियो में खास मेहमान जुड़ रहे हैं। कौन है, कहाँ से है, चलिए ज्यादा आपको इंतजार नहीं कराना चाहूंगा, लेकिन बारम्बार मैं आपसे यही बातें शेयर कर रहा होता हूँ, साझा कर रहा होता हूँ कि अगर आपके पास कोई हुनर है, कुछ आप हमसे कहना चाहते हैं, आपके पास एक अच्छी कला है, आपके पास एक अच्छा टैलेंट है, वो चाहे आप सिंगिंग की बात हो, चाहे वो राइटिंग की बात क्यों ना हो, तो ऐसी हमारे रेडियो को सुनकर, हमारी ख्याति को सुनकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं शारदा यूनिवर्सिटी के एक बहुत ही प्यारे स्टूडेंट हैं जिनका नाम है सुमित कुमार। ये सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं और जीएनएम का कोर्स कर रहे हैं शारदा यूनिवर्सिटी से। माशाल्लाह पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी है, अच्छा गाते, अच्छे इंसान है। तो चलिए ज्यादा इंतजार नहीं कराते तो बात करते हैं सुमित की। तो सुमित फाइनली सुनो शारदा 90.8 एफएम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।
0: कैसा फील कर रहे हैं, कैसा लग रहा है?
1: सर आई एम वेरी एक्साइटेड, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, नया एक्सपीरियंस है सर।
0: सेम मुझे भी अच्छा लग रहा है आपके साथ बात करके, क्योंकि ये आपके साथ मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस है।
1: जी।
0: तो समय सबसे पहले आप मुझे बताएं कि शारदा यूनिवर्सिटी के इस प्रांगण में, ये तो रही बात रेडियो एफएम की, चूंकि आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, और शारदा यूनिवर्सिटी में आना कैसे हुआ, यहाँ का माहौल कैसा है, यहाँ की फैकल्टी कैसी है, कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं उसके बारे में कुछ बताइए, अपने कोर्स के बारे में बताइए जिसका मैं नाम देख रहा हूँ जीएनएम कोर्स आप कर रहे हैं, सो प्लीज बताइए।
1: सर सबसे पहले शारदा यूनिवर्सिटी के बारे में बता देता हूँ। ये तो सर एक अलग ही यूनिवर्सिटी है, मतलब इतने बड़े लेवल पे यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे बच्चों को आने का अलग ही क्रेज रहता है। और मेरा जो कोर्स है जीएनएम जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, मैं यहाँ से नर्सिंग कर रहा हूँ, सेकंड ईयर में हूँ। तो यहाँ की जो फैकल्टी मेंबर है बहुत ज्यादा अच्छे हैं, फ्रेंडली नेचर है बिल्कुल, और बहुत सपोर्टिव हैं। जैसे कि मेरी फैकल्टी मैम ने कोई सजेस्ट किया था यहाँ पे आने के लिए।
0: ओह ग्रेट।
1: तो
0: उनका नाम बताइए।
1: सर मेरी मैम हूँ माधवी शर्मा मैम है।
0: ओह ग्रेट।
1: यस सर, वो हमें एमएसएन पढ़ाती हैं, तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि यहाँ पे जाओ शारदा में। और सर शारदा एक मतलब बच्चों के लिए बहुत सपोर्टिव है, एक प्लेटफॉर्म खुद देता है कि बच्चे आगे निकले यहाँ से जाने के लिए।
0: तो आपको कैसा लग रहा है उन्होंने यहाँ सजेस्ट किया, आपको यहाँ एक मौका मिल गया, हम और आप बात कर पा रहे हैं?
1: सर ये ग्रेट फीलिंग है सर, मेरे लिए बहुत ज्यादा ग्रेट फीलिंग है।
0: ये हमारे लिए भी बहुत एक बड़ा कहते ना कि एक सुखद लम्हा है, इस लम्हे को हम कैद करना चाहते हैं।
1: जी, जी।
0: और

0: जो आपकी बातें वो अपने जो लिसनर्स हैं, जो हमारे श्रोता हैं, उन तक हम बातें पहुंचाएंगे जरूर। सुमित, यहाँ पर मैं एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहूंगा, अगर आपके अंदाज में, क्योंकि आप सिंगिंग करते हैं, आपके बारे में, उस टैलेंट के बारे में जानेंगे जरूर। कोई अगर ब्रेक पर जाना चाहे आपके अंदाज में, तो कोई कैसे ब्रेक पर जाएगा?
1: सर ऐसा ब्रेक के लिए मैं ब्रेक के लिए बना ही नहीं हूँ,
0: ब्रेक के लिए बना ही नहीं है, मतलब लगातार काम करना चाहते हैं,
1: रुकना ही नहीं चाहते, अभी तो सर स्टार्ट ही नहीं किया अच्छे से।
0: चलिए चलिए, खैर मैं उस ब्रेक की बात नहीं कर रहा था, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक हम लेना चाहते हैं जो कि म्यूजिकल ब्रेक है। सो आप कहीं जाएगा मत, मेरे साथ यूं ही जुड़े रहिए, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम, यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। मेरे साथ हैं शारदा यूनिवर्सिटी का एक टैलेंट है जो कि बहुत अच्छे सिंगर हैं, सुमित कुमार, उभरते हुए कलाकार हैं, राइजिंग स्टार इनको हम कह सकते हैं, इनके बारे में जानेंगे जरूर, मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम, यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ।

0: एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। मेरे यानी गगन के साथ और प्रोग्राम का नाम है बिंदास सुबह, बिंदास बोल, बिंदास बातें। खास बात यह है कि आज एक शारदा यूनिवर्सिटी का टैलेंट हमारे बीच में है और यही हमारा उद्देश्य है कि शारदा यूनिवर्सिटी का रेडियो स्टेशन आपके लिए है, हम आपके लिए हैं। और अगर आपके पास कोई टैलेंट है, कुछ दिखाना चाहते हैं जमाने को, तो जरूर यहां आ पाइए और आपकी बात हम आपके श्रोताओं तक जरूर पहुंचाएंगे। तो सुमित, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी जी, शुक्रिया सर, शुक्रिया।
0: ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की थी आपके कॉलेज के एक्सपीरियंस के बारे में, आपके टीचर के बारे में जिन्होंने आपको यहाँ प्रमोट किया कि सुमित आप अच्छा गाते हैं, शारदा यूनिवर्सिटी का अपना एक रेडियो एफएम है, वहां जाकर आप मिलिए। और हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम आपसे बात कर पा रहे हैं और आपके जो टैलेंट है उसको हम हमारे लिसनर्स तक हम पहुंचाएंगे। थोड़ा कुछ और बताइए अपने बारे में। अगर मैं आपसे कहूं कि डिटेल में मुझे बताइए कि ये जो शौक है, इसके शौक की शुरुआत कैसे हुई, कहां से हुई, किसने आपको गाइड किया?
1: जी सर, तो सर जब मैं स्कूल टाइम में था, 12th क्लास की बातें हैं, तो एक रफ्तार है हमारे जो रैपर हैं, उनका रियल नेम है दिलेन नायर, तो सर मैं उनको सुनता था, तो वहीं से मेरे को थोड़ा मोटिवेशन आया कि हाँ मैं भी ट्राई कर सकता हूँ इस फील्ड में। तो मैंने स्टार्ट किया, तो सबसे पहले जो मैंने लिखा था वो सर रैप नहीं था, वो एक सॉन्ग था, एक मेन बात जो ये है। तो वहां से मैंने लिखना स्टार्ट किया, वहां से देख के। तो मैंने जब वो एक सॉन्ग कंप्लीट किया तो वहां से मुझे मोटिवेशन आया कि अब मैं इसको आगे बढ़ा सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कुछ। तो सर मैं रफ्तार को जैसे सुनता था, जो मेरे मोटिवेशन में बहुत ज्यादा हेल्प की उन्होंने, तो वहां से मैंने सोचा क्यों ना अब ये जो मैंने सॉन्ग लिखा है ऐसा ही कोई रैप में कन्वर्ट करके देखूं। तो सर वहां से जब मैंने स्टार्ट किया तो सबसे पहले एक उसके बाद रैप बना के देखा, तो जो उन्हीं का था, जो रफ्तार ने निकाला था एक बैक बेंचर करके, तो सर उन्हीं का हमने उठाया था वहां से, उनके गाने की 4 लाइन लेके सर मैंने पूरा रैप, एक सबसे पहला जो मेरा रैप था वो मैंने अपना बनाया था। और सबसे सर पहला जो मैंने YouTube पे अपना डाला था वो वही था मेरा भी, जो गाने का नाम था बैक बेंचर।
0: तो रिस्पांस कैसा मिला
1: सर उस गाने पे? अभी तक का सबसे ज्यादा अच्छा रिस्पांस आया है, 32K+ व्यूज जा चुके हैं सर।
0: नाइस।
1: सर उस गाने पे।
0: जब आप गाना लिखते हैं तो किस सोच के साथ आप गाने को लिखते हैं और फिर आप उसको किसके पास लेकर जाते हैं कि भाई या सर प्लीज आप मुझे गाइड करिए कि मेरा गाना सही लिखा गया है, या किसको इसको और कैसे मैं बेहतर बना सकता हूँ?
1: सर मेरे गाने बेसिकली जो अभी तक मैंने किए और मैं कर रहा हूँ ये स्टोरी बेस्ड होते हैं। जैसे बैक बेंचर में मैंने स्कूल लाइफ बताई है, एक दूसरा सॉन्ग मेरा आया था झूठा इश्क, वो मैंने उसमें लव लाइफ बताई थी अपनी कि लव लाइफ कैसे होती है क्या। अब जैसे सर एक है मेरा, उसके बाद मैंने जो निकाला है मिडिल क्लास फैमिली, मिडिल क्लास मेरे सॉन्ग का नाम है, तो सर उसमें मैंने एक स्टोरी बताई है कि मिडिल क्लास इंसान की कैसे
0: कहानी
1: है,
0: स्ट्रगल उसका,
1: जी जी कैसा स्ट्रगल है, तो वो है मेरा। तो मतलब मेरे जो थोड़े रैप है वो कहानी पे बेस्ड है, बाकी अभी मैं ऐसा कर रहा हूँ कि हिप हॉप टाइप भी मैं जैसे जैसे एक्सपीरियंस मिलता जा रहा है तो वैसे वैसे मैं उसको बढ़ाता जा रहा हूँ अपने उसको टैलेंट को। तो आगे भी सर ऐसा है कि अभी अच्छे अच्छे सॉन्ग्स रेडी हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, मेरी तरफ से आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप अच्छा कर रहे हैं क्योंकि अभी तो एक छोटी सी शुरुआत है।
1: जी जी,
0: मंजिल बहुत दूर है, बहुत करीब जरूर आएगी जब आप छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ रहे होंगे, तो निश्चित तौर पर सब कुछ अच्छा होगा, बेहतर होगा। यहाँ पर सुमित एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं हमारे लेसन को, एक छोटा सा ब्रेक और उस पर एक गाना आपके लिए, सो कहीं जाएगा बस सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ।

0: हंसते मुस्कुराते इस छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल, खुशामदीद, खैर मकदम। मैं हूं आजीज हरदिल अजीज, गगन, वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की मैं कोशिश करता हूं अपने इस खास प्रोग्राम के माध्यम से जिसका नाम है बिंदास सुबह, बिंदास बोल, बिंदास बातें। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपके पास कोई हुनर है, कोई टैलेंट है जिसको आप जमाने के बीच लेकर जाना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं 01204060205 अर्थात हिंदी में। ये मैंने आपको बता दिया 120 40 60 205। एक बार पुनः इसकी पुनरावृत्ति कर मैंने आपको ये बात बता दी कि इसके माध्यम से आप हमसे संपर्क साध सकते हैं। 90.8 FM@sharda.ac.in पर भी आप हमें मेल कर सकते हैं। फिलहाल शारदा यूनिवर्सिटी का एक राइजिंग स्टार है जो कि हमारे बीच है, सुमित कुमार है, जो कि एक अच्छे रैपर है, बहुत अच्छा लिखते हैं, और इसके टैलेंट को इनकी फैमिली ने पहचाना, खुद इन्होंने पहचाना, इनकी टीचर ने पहचाना और इनके दोस्तों ने भी इनके टैलेंट को पहचाना। यही वजह है कि शारदा यूनिवर्सिटी में ये कि शारदा FM में ये अपने दोस्तों के साथ यहाँ आए, और मुझे लगा कि जब ऐसे अच्छे दोस्त हैं तो क्यों ना हम उनको ये दिखाएं कि रेडियो किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से बातें होती हैं। तो सुमित, दोस्तों के बारे में क्या कहना चाहोगे?
1: सर, दोस्तों के बारे में सर ऐसा है कि मेरे कुछ लिमिटेड ही दोस्त हैं, मैं ज्यादा दोस्ती नहीं रखता हूं। और सर जो जितने भी हैं वो सर इतने अच्छे हैं कि बहुत सपोर्टिव हैं मेरे को लेके, मेरे मतलब वो ना सिर्फ इसमें म्यूजिकल में, मेरे को एज अ फ्रेंड वो अपने करियर में भी, जैसे मैं यहाँ पे नर्सिंग कर रहा हूँ तो वो उस फील्ड में भी मेरे को हेल्प करते हैं। तो वो ऑल ओवर वो जो मेरे फ्रेंड है वो बहुत ज्यादा मोटिवेट करते रहते हैं मेरे को हर टाइम टू टाइम, पढ़ाई में भी लेके और गाने में भी लेके और
0: वेरी गुड लाइफ की। क्या नाम है दोनों दोस्तों के?
1: सर एक मोलश्री है सर जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, जो वहाँ पे साथ में अभी हाई है हमारे,
0: जी जी जी,
1: और सर एक प्रथम है।
0: प्रथम है,
1: हाँ जी।
0: चलिए इनको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं कहूंगा कि ये याराना आपका बना रहे, दोस्ती आपकी बनी रहे। तो सुमित, अब आते हैं कम टू द पॉइंट, यानी कि उसी मुद्दे पर आते हैं जिसके बारे में हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपके इस टैलेंट के बारे में जाना कि आपकी शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से आपने लिखना शुरू किया, कौन आपके आइडियल हैं जिनको आप मानते हैं। अब बात आती है फैमिली की, फैमिली का यहाँ मैंने जिक्र किया, फैमिली में किसने आपको सपोर्ट किया?
1: सर सपोर्ट सबसे पहले जो मेरे को फैमिली ने किया वो मेरी सिस्टर थी और ब्रदर थे।
0: क्योंकि वो आपसे बड़े हैं छोटे हैं?
1: हाँ सर, वो सबसे बड़े हैं, मतलब मैं सबसे छोटा हूँ अपनी फैमिली में, सबसे बड़ी मेरी सिस्टर है और उसके बाद मेरे ब्रदर, उसके बाद मैं।
0: तो वो क्या करते हैं दोनों?
1: सर मेरी जो सिस्टर है वो नर्सिंग ऑफिसर है, तो वहीं से उन्होंने मेरे को यहाँ पे नर्सिंग में डाल दिया।
0: ग्रेट, नाइस।
1: तो उसके बाद सर मेरे जो ब्रदर है वो बैंक में मैनेजर है।
0: उन्होंने बैंक में नहीं डाला?
1: उन्होंने बैंक में नहीं डाला।
0: ओके, तो उन्होंने आपके टैलेंट को पहचाना, उन्होंने आपको मोटिवेट किया कि आप अच्छा करो, लिखो, आगे बढ़ो।
1: यस सर।
0: अच्छा, मम्मी पापा की अगर मैं बात जानूं तो उनकी तरफ से कैसा रिस्पांस रहा?
1: सर स्टार्टिंग में तो मम्मी को मतलब इतनी नॉलेज है नहीं इस चीज के बारे में, तब मम्मी को जब मैंने दिखाया अपना गाना डाला तो मम्मी को खूब पसंद आया, तो मम्मी ने सपोर्ट किया। तो थोड़ा पापा है पीछे, मतलब डायरेक्टली तो सपोर्ट नहीं करते, इनडायरेक्टली वो करते हैं।
0: हाँ है भाई। तो पापा चाहते हैं कि कुछ बन जाओ,
1: जी बन जाए
0: और अच्छी तरीके से अपने करियर को स्थापित कर लो, खूब रुपया पैसा कमाओ।
1: जी सर।
0: लेकिन ऐसी बात नहीं है कि इस फील्ड में रुपया पैसा नहीं है, खूब इज्जत है, खूब सम्मान है जब आप स्थापित हो जाते हैं।
1: जी सर।
0: तो सुमित, यहाँ पर मैं एक ब्रेक जरूर लूंगा, लेकिन ब्रेक से पहले मैं ये भी जानना चाहूंगा कि मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, आप जिम जाते हैं, आपने अपने आपको मेंटेन करके रखा है, तो ये शौक इसको और उसको कैसे बराबर मेंटेन करते हुए आप आगे बढ़ते हैं?
1: सर जैसे ये करियर ऐसा है, फील्ड ऐसी है कि इसमें सर पर्सनैलिटी भी काम आती है एज अ मॉडल, जैसे हमें शूटिंग करनी होती है, शूट करना होता है, तो अपनी पर्सनैलिटी मेंटेन करने के लिए तो सर मैं जिम काफी साल का एक्सपीरियंस हो गया मेरे को, 5-6 साल हो गए हैं
0: तब से जिम कर रहे हैं।
1: जी जी, जिम कर रहा हूँ मैं, तो काफी ट्रांसफॉर्मेशन भी की मैंने इस चीज को लेकर फील्ड के अकॉर्डिंग।
0: अच्छा, नाइस। अच्छा, खान पान का बड़ा मैटर रखा जाता है, योग का भी बहुत ध्यान रखा जाता है, अनुशासित होना भी बहुत जरूरी है,
1: डिसिप्लिन डाइट।
0: हाँ, तो उसके बारे में बताइए कि किस तरीके से आप एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि लोग तो अब बहुत आलसी हो गए हैं, खाने पीने का ध्यान नहीं रखते और उल्टा सीधा खा रहे होते हैं, नींद वो पूरी ले रहे होते हैं, मतलब आलसी भी हो गए थे, नींद लेना बहुत जरूरी है। तो क्या एक मैसेज देना चाहेंगे जो लोग हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे हैं?
1: सर आज की डेट में तो सर हेल्थ इश्यूज बहुत आ रहे हैं, एज अ मैं जैसे नर्सिंग ऑफिसर है, हमें हॉस्पिटल में जो ड्यूटी लगती है तो लोग को बहुत देखने को मिलता है, जैसे जंक फूड बहुत खाते हैं उन्हें, तो एब्डोमिन इन्फेक्शन काफी ज्यादा होने लगता है। तो आज की डेट में सर डाइट बहुत ज्यादा मैटर करती है, और सर मेरे लिए थोड़ा हार्ड वर्क हो जाता है क्योंकि सर क्लिनिकल्स में ड्यूटी वगैरह होती है, फिर उसके बाद सर असाइनमेंट्स होते हैं, उसके बाद सर जिम, और उसके बाद सर डाइट, और एक सर हॉस्टल का खाना, सर सबको पता है हॉस्टल लाइफ।
0: तो आप यहाँ रह रहे हैं?
1: जी हॉस्टल में रह रहा हूँ सर मैं। तो हॉस्टल में सर थोड़ी डाइट।
0: मैं एक बात कहना चाहूंगा यार, ये अक्सर बात मुझे सुनने को समझने को मिलती है, हॉस्टल का खाना देखो यार इतना बुरा नहीं होता, बिकॉज क्योंकि हर एक सिस्टम है। जैसे सपोज करिए कि हॉस्टल के जो देख रेख के केयर टेकर जिन्हें आप कहें, वार्डन जिनको आप कहें, वार्डन के ऊपर भी एक कमेटी होती है, उनके ऊपर एक कमेटी होती है, और कहा जाता है कि अन्य के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए क्योंकि खाना ऑब्वियसली बहुत अच्छा मिल रहा होता है, लेकिन हाँ मैं ये समझ सकता हूँ कि माँ का प्यार अलग है,
1: घर वाला स्वाद नहीं है,
0: वो सीन अलग हो सकता है। तो लेकिन दोस्त सुमित का कहना यही है कि अच्छा खाइए, अच्छा अपनी सेहत का ख्याल रखिए, एक्सरसाइज करेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी सेहत में चार चांद लगते चले जाएंगे। और इन्होंने एक बहुत अच्छी बात मेंशन की कि जंक फूड जिसको हम कहते हैं कि फास्ट फूड जो कि बहुत जल्दी तैयार होता है, बहुत जल्दी आपकी सेहत को वो नुकसान भी पहुंचा रहा होता है। तो फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद मैं आपको मिलूंगा, यहीं कहीं जाएगा मैं, सुनते रहिए। मेरे साथ जुड़े हुए हैं सुमित कुमार जो कि शारदा यूनिवर्सिटी का नर्सिंग डिपार्टमेंट का स्टूडेंट है, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है, जीएनएम का कोर्स कर रहे हैं, बहुत अच्छा ये गाना गाते हैं, बहुत अच्छे रैपर हैं, और इनके गाने के बारे में जरूर हम जानेंगे। तो सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।

0: एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। और कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। आप कोशिश करिए, प्रयास करिए और छोटे छोटे कदमों से आप निश्चित तौर पर आप अपनी मंजिल को पा ही लेंगे। जी हाँ, एक ऐसा ही उदाहरण मेरे सामने जुड़ा हुआ है। सुमित कुमार हैं, जो कि शारदा यूनिवर्सिटी के नर्सिंग डिपार्टमेंट से आते हैं, सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, जीएनएम का कोर्स कर रहे हैं। और इनकी जो शुरुआत रही, घर में एक नर्सिंग ऑफिसर भी हैं जो कि इनकी सिस्टर हैं, उन्होंने इनको प्रेरित किया। और वाकई शारदा विश्वविद्यालय में आकर कहते हैं ना कि वेयर आर यू, द वर्ल्ड इज हियर। जब आप एक यहाँ आएंगे, एक बार विजिट करेंगे, तो सुमित हम अपनी टैगलाइन बनाकर रेडियो पर प्रचारित करते हैं, प्रसारित करते हैं कि जब आप एक बार यहाँ आएंगे तो आप यहीं कर होके रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ का माहौल, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ की पढ़ाई, प्लेसमेंट, बहुत सारी चीजें हैं। तो सुमित, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका कोई एक प्रोफेशनल नेम है या प्रोफेशनल कोई एक यूट्यूब है जिस पर आपकी वीडियोस होती हैं, लोग आपसे जुड़ सकें, आपसे बात कर सकें?
1: जी सर, मैं बताता हूँ। मेरा जो प्रोफेशनल नेम है, लेविन सुमित है। लेविन सर जो इंद्र जी के वेपन है, इंद्र जी का जो वेपन है उसको कहा जाता है लेविन, जिसका हिंदी में नाम है वज्र। हिंदी में वज्र कहते हैं,
0: वज्र।
1: हाँ, इसका मीनिंग थंडर स्टॉर्म, पावर, इलेक्ट्रिसिटी, जैसे बिजली निकलती है उनके में।
0: अच्छा,
1: तो लेविन का मतलब यही है।
0: ओके,
1: तो ये नाम मैंने ऐसा रखा कि लेविन सुमित मैंने इसलिए रखा क्योंकि कुछ रैपर हैं कि वो अपना नाम, जो रियल नेम होता है, हाइड करके वो कुछ दूसरा नाम रखते हैं कि उनसे लोग पहचाने जो। लेकिन मेरे माँ बाप ने मेरा नाम प्यार से रखा हुआ है, उसके साथ मैं आइडेंटिटी के साथ वो अपनी दूसरे नाम, जो प्रोफेशनल नेम है, आगे लेके जाना चाहता हूँ।
0: मैंने भी सोचा, मैं भी जब एक्टर बन जाऊंगा तो मैं भी अपने नाम के साथ चलूंगा।
1: सर,
0: ये बात आपने बहुत अच्छी कही, मैं भी इसी बात पर यकीन करता हूँ कि मेरा नाम गगन गौतम है। फर्स्ट नेम भी बहुत अच्छा है और सेकंड नेम भी मेरा माशाल्लाह बहुत प्यारा है, गौतम ऋषि के नाम पर हम गौतम है। इस तरीके से मुझे लगता है कि अपनी एक पहचान को बरकरार रखना, उसके साथ आगे चलना, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। सुमित, अगर फाइनली मैं आपसे कोई एक बहुत ही खूबसूरत गाना या यूं कहें कि रैप सुनना चाहूँ, तो कौन सा आप हमारे लिसनर्स को रैप सुनाना चाहेंगे?
1: सर, मैं चार लाइन सुनाना चाहूंगा।
0: नहीं, तुम आठ सुनाओ बाबा, टाइम तुम्हारा है, बोलो।
1: ओके सर, जी सर, मैं अभी जो मैंने नया रिसेंटली सॉन्ग निकाला है, बम भोले, तो भोले बाबा पे मैंने कुछ सॉन्ग बनाया, तो वो उसकी लाइनें बताना चाहूंगा।
0: प्लीज।
1: भोले का रंग चढ़ा भंग, रगड़ भंग पिया मस्त जिया, भोले का फैन हूँ मैं, शिव का कैर हूँ मैं, विशिला जैर हूँ मैं, छोटा पत्थर तू पूरा कैलाश हूँ मैं, भोले तलाश में आ घूमू मैं तो तेरी चारों धाम में, मिलाना तेरे जैसा कोई मुझे सारे संसार में, दुश्मन का पे भोले सारे तेरे नाम से, काम बने मेरे सारे तेरे नाम से, बम बोले बोले तो बम बोले।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे बोल, बहुत अच्छी शुरुआत, बहुत अच्छा एक आपने ताना बाना बुना है। तो भोले बाबा की कृपा आपके ऊपर बनी है, बनी रहे, मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: शुक्रिया।
0: फाइनली कुछ अगर आप कहना चाहते हैं कि उन लोगों के लिए जो फील्ड में आ रहे हैं, अपने करियर को आगे लेकर जाना चाहते हैं, एक अच्छे रैपर बनना चाहते हैं, क्या संदेश होगा?
1: सर, सबसे पहली बात है कि खुद के अंदर मोटिवेशन होनी चाहिए ये चीज करने की, क्योंकि सर कुछ सोसाइटी है कि वो इस चीज में थोड़ा, सर जब स्टार्टिंग होती है, हम जैसे छोटे जैसे आर्टिस्ट हैं, उनकी जब स्टार्टिंग होती है तो सर सोसाइटी थोड़ा बहुत रोक टोक करती है कि इस चीज में कुछ नहीं रखा। तो सर खुद से ना, सर सेल्फ मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है इस चीज में। तो सर किसी की ना सुन के अपने दिल की करे, अपने मन की करे, जो टैलेंट है सर उसको आगे लेके जाए और कोशिश करते रहे सर, एक दिन अपने सपने पूरे जरूर होते हैं।
0: बेशक बेशक, जरूर सपने पूरे होते हैं, लेकिन उन सपनों के सामने सच बात तो ये भी कि दिक्कतें आती हैं, परेशानी आती हैं, और इसलिए कहा जाता है कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, यानी कि ईश्वर, खुदा, माँ बाप की ब्लेसिंग्स काम आती चली जाती है, और निश्चित तौर पर फिर वो एक दिन आपका आता है जब आप अपनी मंजिल को पा लेते हैं, अपने सपने को साकार कर लेते हैं। तो सुमित, मुझसे बात करके मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आपको कैसा लगा?
1: सर, मेरे को बात करके सर आपसे बहुत ज्यादा अच्छा लगा है। सर, ये आपसे एक मैं चीज सीखा हूँ यहाँ पे के, वॉइस मॉड्यूलेशन कैसे करूं मैं सर।
0: थैंक यू। तो, नहीं नहीं, आप अच्छा काम कर रहे हैं।
1: जी,
0: कुछ बातें होंगी तो जरूर मैं फिर आपके साथ साझा करूंगा। सो लिसनर्स, ये प्रोग्राम, ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा? 01204060205 अर्थात 12040602 पर आप हमें कॉल करके बता सकते हैं। इसके अलावा 90.8 FM@sharda.ac.in पर भी आप हमें मेल कर बता सकते हैं। फिलहाल वक्त का इशारा हो चुका है, वक्त का इशारा जब होता है तो मुझे लेनी होती है अनुमति। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लिए ना टेंशन लेने की जरूरत, ना किसी को टेंशन देने की जरूरत। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ गुजारते चले जाइए और सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन 90.8 FM। टाटा बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।

0: दिल बोले तो हार्ट हार्ट
1: हवा यार सौदा सौदा
2: ओहो
3: दोनों डील कर सील
0: टाइट वेरी टाइट।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: भाई और बहनों, इस गाने को आवाज दी है हीर ने, म्यूजिक दिया है हीर और अमन नूर ने, ट्रेडिशनल लिरिक्स अमीर खुसरो। जी हाँ, गाने के बोल हैं छाप तिलक सब छीनी री मोसे नैना मिला के, फ्रॉम द मूवी गिनी वर्स सनी टू। आइए सुनते हैं छाप तिलक ऑल ऑन सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: मेरी सुशीला, तेरो बालक ऐसो रो रहे है, भूखो है का?
1: हाँ भूख ही लग रही होएगी।
0: तो याए शहद दे दे।
1: हाँ तू 2 मिनट बैठ, में लेके आई।
2: मैं पागल वागल हो गई है का? तो उससे कितनी बेर बोली है कि 6 महीने को होने से पहले बालक है माँ के दूध के अलावा कुछ और न देना चाहिए। ये बालक की सेहत को घना नुकसानदायक है।
1: संगीता की भी तो बालक हुआ हो, वो तो शायद देख रही है अपने बालकन ने जब वाके दूध न उतर रहो।
2: डॉक्टर की बात तो तेरी बुद्धि में पता न क्यों घुसना रही है, वाने कही ना यू सब देने से बालक बीमार हो जावे। बे मतलब के काम करवा लो बस। बालक के स्तनपान करवाने से बालक की प्रतिरक्षा प्रणाली तगड़ी होवे, जासु बालक संक्रमण, एलर्जी और बाकी बीमारियों से दूर रहवे। बालक में हड्डी वाली बीमारी होने का भी खतरा कम रहवे और माँ बालक के संबंध में मिठास भी आवे। और स्तनपान न करवाने वाली महिलाओं में जल्दी गर्भाधारण करने की संभावना बनी रहे, खून की कमी और डिलीवरी के टाइम पे अधिक रक्तस्राव की भी संभावना बनी रहे, स्तन और अंडा से कैंसर का भी खतरा ज्यादा हो गए। तो इसलिए अपने बालक स्तनपान ही कराएं और 6 महीने का होने से पहले बालक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही पिलाएं।
3: यूनिसेफ और सुरु शारदा 90.8 FM की तरफ से जनहित में जारी।

0: Sharda School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आर्जिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: तुम्हारा टैंक चल रहा है, अबैंडन टैंक राइट नाउ।
3: जो सो लोड माय डाइ, माय गॉड इज स्टिल वर्किंग, आई कैन बी मास्टर्स।

0: सप्ताह नहीं बल्कि पाकिस्तानी फौज के लिए भी एक मिसाल है सर।
1: अगला परमवीर चक्र हमारे रेजिमेंट के लिए मैं लेकर आऊंगा।
2: चलती है सांसें जिसकी, हर शख्स वो जिंदा है, जिसके जीने का मकसद हो वही तो बंदा है।
1: सर लड़ाई होने वाली
2: बनता है

0: हम फौजी हैं, जस्ट फॉर ऑर्डर्स।
1: और तो उसे भी मिला था, अब जाने के लिए कमबख्त माना नहीं। लड़ता रहा।
2: एक भी टैंक, एक इंच पीछे नहीं हटेगा।

0: Sharda School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट. ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग.
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन. आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है. तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in. शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश.

साहब मैं हूँ गगन आपके साथ, वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की मैं कोशिश करता हूँ अपने सिखाए से प्रोग्राम के जरिए, जिसका नाम है बिंदास सुबह बिंदास बोल बिंदास बातें। मंडे टू सैटरडे सुबह 9 से 10 लाइव में रहता हूँ आपके साथ, और हमेशा ईश्वर से, खुदा से, पिता परमेश्वर से यही दुआ, यही प्रार्थना करता हूँ कि आपका दिन शुभमय गुजरे, मंगलमय गुजरे, कहीं कोई दिक्कत परेशानी ना हो। इसके लिए जरूरी है कि सुरक्षित चलिए, सुरक्षित घर, सुरक्षित ऑफिस पहुंचिए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। 30 तारीख है, बुधवार का दिन यानी कि वेडनेसडे का दिन, क्या है खास जानेंगे जरूर, मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल योर सोर्स शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। हैव अ सुपर्ब डे, गुड मॉर्निंग।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। स्टूडियो की घड़ी में 9:12 हो चुके हैं। 30 तारीख है यानी कि सितंबर का महीना, और स्कूल की अगर हम बात करें कहीं के कॉलेजेस में भी आज हाफ डे हो जाता है, और हाफ डे का जब जिक्र होता है तो बड़ी खुशी होती है। बड़ी खुशी होती है। बच्चों को और क्या चाहिए, बच्चों को चाहिए सिर्फ छुट्टी छुट्टी छुट्टी। कल क्या है खास उसके बारे में भी जानेंगे, लेकिन फिलहाल आज क्या है खास, मौसम का क्या है मिजाज उसके बारे में बात कर लेते हैं। आज का वर्तमान तापमान लगभग 28 डिग्री सेल्सियस से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है, और दिन में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक जाने का अनुमान है, और जबकि रात तक ये गिरकर थोड़ा सा गिरेगा, 22 डिग्री सेल्सियस तक आ सकता है। आसमान की जो स्थिति है उसके बारे में बात कर लेते हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज दिन भर आसमान पूरी तरह से साफ रहेगा और अच्छी धूप खिली रहेगी। हालांकि IMD ने उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों के लिए बारिश या सामान्य अलर्ट भी जारी किया है, लेकिन ग्रेटर नोएडा में फिलहाल बारिश की संभावना 0 है, 0 है। शाबाश। हवा और नमी की अगर हम बात करें तो उत्तर पश्चिम दिशा से 10 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। हवा में नमी अर्थात ह्यूमिडिटी का जो स्तर है, जो लेवल है, वो जो सुबह लगभग 60-69% के % के आसपास बना हुआ है। वायु गुणवत्ता AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर हम बात करें तो ग्रेटर नोएडा के आसपास 129 दर्ज किया गया है, जो कि खराब श्रेणी में आता है, और बाहर निकलते वक्त आपको सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। वायु गुणवत्ता सूचकांक की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जाती है, और 4 महीने लॉकडाउन जैसी स्थिति हो जाती है, यानी कि क्या करें क्या ना करें कुछ चीजों पर पाबंदी होती है। जानेंगे जरूर, मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद अपडेट। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल योर सोर्स शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। गुड मॉर्निंग, मैं हूँ गगन आपके साथ।
2: ना दे दिल पर देसी नू तेन नित दारूणा पै जाऊगा, नाल रहजे ते जोगी दे तेन जोगन होना पै जाऊगा।
3: Get ready.

0: लेकिन दोस्त, अगर ऐसे ही जिंदगी का साथ निभाते चले तो जिंदगी तुम्हारा साथ निभाना छोड़ देगी और अस्पतालों के चक्कर लगेंगे सो अलग।
1: जी हाँ, आप भी सचेत रहें और रहें धूम्रपान से दूर, क्योंकि हम सबका है यही सपना, नशा मुक्त हो भारत अपना। सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। यदि आपको दो हफ्ते से ज्यादा खांसी, रात का पसीना, हल्का बुखार, वजन का कम होना या भूख में कमी महसूस हो तो जल्द से जल्द अपनी बलगम की जांच कराइए, क्योंकि ये टीबी के लक्षण हो सकते हैं। घबराइए नहीं, इसका 6 से 8 महीने का पूरा इलाज है और देश के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में इसकी जांच और इलाज के कोई पैसे नहीं लगेंगे। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: सच बात तो यही कि अगर आप और हम कुछ ठान लें तो निश्चित तौर पर किसी भी चीज को जीत सकते हैं। किसी को हराना है तो हम हरा सकते हैं। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही वन एंड ऑल इज सुरुशादा 90.8 FM, इट्स अ कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने बात की थी कि AQI, यानी कि इसको अच्छी तरीके से हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स, वायु गुणवत्ता सूचकांक, जब खासकर 4 महीने आते हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, और यहां पर दिल्ली NCR में चीजें लागू हो जाती हैं। GRAP 1, GRAP 2, GRAP 3, GRAP 4, GRAP अपडेट ये सामने आ रही है कि जिस व्हीकल की जो लिमिट है वो अगर खत्म हो गई है तो उन व्हीकल को आप ऑन रोड ना लेकर आए, कूड़ा खाली जगह पर नहीं, निर्धारित जगह पर आप फेंकें, मलबे को तुरंत प्रभाव से आपको हटाना होगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कार यानी कार पुलिस पुलिंग से आप यात्रा कर सकते हैं, कार पुलिंग आप कर सकते हैं। GRAP 1, GRAP 2 में यानी कि पार्किंग लेन, ड्राइविंग और फुटपाथ पर चलने के नियमों का आपको पालन करना होगा, रसोई की चिमनी की नियमित आप सफाई करें। GRAP 3 में ऐसी प्राइवेट गैदरिंग को टाल दें जो ट्रैफिक या बाहरी एक्सपोजर को बढ़ा रहा है, यानी कि अगर आप कहीं आ जा रहे हैं तो उससे इस दौरान बचने की कोशिश करेगा। प्राइमरी स्कूल में हाइब्रिड मोड और वर्क फ्रॉम होम का पालन करना होगा। GRAP 4 में स्कूलों में हाइब्रिड मोड का पालन आप करें और जो गतिविधियां हैं, जैसे जो प्रतिबंध अगर लगाए जाएंगे, जो दिशा निर्देश होंगे, उनका पालन करने की बहुत जरूरत है। तो इन 4 महीनों में अगर आपका शादी ब्याह का कोई फंक्शन है या कुछ और होने जा रहा है तो बहुत ध्यान से सोचकर समझकर आप अपने कदम आगे बढ़ाएगा, फिर ना कहेगा कि हमने आपको अपडेट नहीं किया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड, ऑल यू सुरुशादा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

शहर में म्यूजिक प्रोड्यूस्ड एंड अरेंज्ड बाय जैकी वंजारी, सिंगर सोनू निगम एंड ऐश्वर्या भंडारी, लिरिक्स बाय कुमार, म्यूजिक बाय श्रेयस पुराणिक, दो दीवाने शहर में ओनली ऑन सारेगामा, सो लेट्स एंजॉय इट, केवल सुरोशादा 90.8 FM।

0: सबको हाथ बटाना है, टीबी को मिटाना है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ दीपाली, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। हम लोग स्मार्ट के सहयोग से एक अवेयरनेस कार्यक्रम चला रहे हैं, टीबी हारेगा देश जीतेगा। स्मार्ट अपनी मुहिम में ये सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है कि प्रत्येक टीबी रोगी का उपचार हो। अगर आपको टीबी है तो बिल्कुल घबराएं नहीं, बस अपने नजदीकी अस्पताल जाएं और छाती का एक्सरे और बलगम की जांच कराएं और स्मार्ट की इस मुहिम में हमारा साथ दें।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: वादा स्टूडियो क्लॉक 9:31 हो चुके हैं। 30 तारीख है यानी कि बुधवार का दिन, सितंबर का आखिरी दिन, हाफ डे का दिन। स्कूल में कहीं ना कहीं कॉलेजेस में आज हाफ डे छुट्टी हो जाती है और निश्चित तौर पर बच्चों के चेहरे पर रौनक आ जाती है और उसके बाद घर जब वो पहुंचते हैं धमा चौकड़ी शुरू हो जाती है। हाँ, मम्मी परेशान हो जाती है कि काश बेटा आज भी फुल डे होता तेरा। चलिए, लेकिन हम बच्चों की जब हम बात करते हैं तो निश्चित तौर पर हमें तो छुट्टियों से मतलब, हमें नहीं मतलब कि आज हाफ डे है या फुल डे होने वाला है या कल क्या खास होने वाला है, हमें तो बस सिर्फ छुट्टियां चाहिए। हाँ, जैसे कि अब नोएडा एक्सपो चला गया, एक दिन की छुट्टी मिलगी, बार बार थोड़ी मिलेगी। हाँ, नोएडा एक्सपो, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि 25 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक इस मेले का आयोजन किया गया और ये मेला वाकई बहुत सक्सेसफुल रहा। 25 सितंबर को फुटफॉल बहुत ज्यादा थी तो इस वजह से नॉलेज पार्क में एक दिन का अवकाश था, वर्क फ्रॉम होम था। मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति आने वाले समय में AQI जब डिस्टर्ब होता है तो दिक्कतें परेशानी लोगों के सामने आती है। ग्राफ 4, ग्राफ 1, ग्राफ 2, ग्राफ 3, तो कहने का मतलब यह कि हाइब्रिड मोड पर स्कूल में, कॉलेजेस में, कॉर्पोरेट सेक्टर में हाइब्रिड मोड पर आप चले जाते हैं, यानी कि एक दिन वर्क फ्रॉम होम, एक दिन ऑफिस वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से 4 महीने स्थिति कुछ ऐसे रहने वाली है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। तो इस तरीके से सोचना पड़ेगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। अपने पर्यावरण का ख्याल रखिए, पेड़ पौधे हमें लगाना बहुत जरूरी है। एक पौधा अपनी माँ के नाम जरूर लगाइए, साथ ही साथ बीबी की माँ के नाम भी पौधा जरूर लगाना, वरना रायता फैलने में देर नहीं लगेगी। सच बात है, पितृपक्ष भी चल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, शाबाश, तुमने इससे रिलेट कर दिया। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ कि पितृपक्ष चल रहे हैं तो साफ सफाई का भी ख्याल रखें, अपनी स्थिति को भी अच्छी, कहते हैं ना, पूजा पाठ विधि विधान से पूजा करें और हम अपने बड़े बुजुर्गों के लिए याद कर रहे हैं, उनको सम्मान दें। और अगर आपके पास आपके बड़े बुजुर्ग हैं तो उनको भूलेगा मत। गुड मॉर्निंग, मैं हूँ गगन आपके साथ।

0: ताज़ा खबर। कमला के घर में चार औरतें चोरी छिपे घुस गईं। कमला जी, कौन थी औरतें?
1: अरे मेरी सहेलियाँ, वो आई थी पता करने मेरी मुन्नी की तंदुरुस्ती का राज।
0: क्या है राज?
1: 6 महीने पूरे होते ही पेट पूजा। रसोई में जो भी हो, जैसे दाल चावल ले लो, इसमें कोई भी साग सब्जी मिला के पकाओ, इनको मीस के गाढ़ा बनाओ, और अगर घी हो तो ऊपर से थोड़ा घी मिलाओ और बच्चे को खिलाओ, दिन में 3 बार 100 ग्राम की कटोरी में।
2: स्तनपान विकल्प नहीं, संकल्प है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी ही अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।
4: हाय, मैं अरुण विजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8 FM।

वेलकम बैक। यू आर लिसनिंग सुनो शारदा 90.8 एफएम, इट्स अ कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। सुनो शारदा 90.8 एफएम कम्युनिटी के लिए रेडियो स्टेशन ये वर्क करता है, समुदाय के लोग यानी कि आप और हम इस सब को आगे लेकर जा रहे होते हैं, स्टूडेंट्स की इसमें भागीदारी होती है। स्टूडेंट्स का जब मैं जिक्र कर रहा हूं तो जाहिर सी बात है कि SSMFE यानी कि शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट के जरिए बहुत कुछ सीखने समझने को मौका मिलता है। और स्टूडेंट्स जब यहां आते हैं तो फिल्म के बारे में बारीकियां सीखते हैं, टीवी के बारे में बारीकियां सीखते हैं और रेडियो के बारे में भी यहां आकर प्रैक्टिकल करने का एक मौका मिलता है। तो हमेशा मौके पर चौका मारना चाहिए। फिलहाल मौके के चौके का जब मैं जिक्र कर रहा हूं तो आज इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का क्रिकेट का मुकाबला है। दोपहर 2 बजे से लोग टीवी सेट पर चिपक जाएंगे और जब से मोबाइल में टीवी सेट आया है ना, जो लोग मतलब काम पे कम ध्यान देते हैं, हाँ लेकिन बॉस का ध्यान आपके ऊपर हमेशा रहता है क्योंकि हमारे ऊपर कैमरे लगे होते हैं। तो ऑफिस में आप सिर्फ ऑफिस का ही काम करेंगे, उसके बाद आप फ्री होते हैं, फिर कोई आपको रोक टोक नहीं करेगा, है ना। तो आज इस मैच का लुत्फ उठाएगा, जिस तरीके से विराट जीत की ओर अग्रसर हो रहे हैं और जिस तरीके से वो सचिन पाजी के रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो निरंतर वो लगातार कोशिश करते रहे। प्यार दुआएं शुभकामनाएं हमारी उनके साथ हैं और वर्ष 2027 का जो वर्ल्ड कप है उस पर हम सबकी निगाहें, और विराट को बहुत बहुत दिली दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, पहला नशा, ब्यूटिफुल ट्रैक, सिर्फ सुनो शारदा 90.8 एफएम पर। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ, सिर्फ सुनो शारदा 90.8 एफएम पर। ट्रैफिक के नियमों का पालन करिएगा।

इस सॉफ्ट नंबर को सुनने के बाद एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही वन एंड ओनली सुरुशादा 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। स्टूडियो की घड़ी में ना उसका 40 मिनट हो चुके हैं। वक्त हाथ से रेत की माफिक फिसलता चला जाता है। सच बात तो ये कि वक्त गुजरता चला जाता है। वक्त पर जब आप सारे काम करेंगे तो कोई दिक्कत परेशानी होगी नहीं। आज है 30 तारीख है, कल है 1 अक्टूबर और उसके बाद 2 अक्टूबर, हाँ उसके बाद 3 अक्टूबर, फिर 4 अक्टूबर, कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोगों को अक्सर हमने देखा है कि जैसे 2 की छुट्टी है, 3 की छुट्टी ले लेंगे, फिर इस तरीके से 3 दिन का एक पैकेज बन जाएगा। 4 दिन कुछ दिन रात हमारे यहाँ गुजारी होटल में, मतलब पैकेज थोड़ी हमें देखना है, लेकिन लोग ऐसी छुट्टी का प्लान कर रहे होंगे। लेकिन मैं आपको अलर्ट करना चाहता हूं कि कल से कुछ खास होने जा रहा है। आपकी जेब फिर से ढीली होने जा रही है, अर्थात कुछ नियम कायदे कानून आपको हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है कि फर्स्ट जब भी महीने की पहली तारीख आती है तो बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। यानी कि सबसे बड़ा बदलाव होता है LPG में, इसके बाद दूसरा जो बदलाव होता है ATF के जो दाम है उसमें भी चेंजेस नजर आते हैं। यानी कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियां महीने के पहले दिन सिर्फ LPG के अलावा ATF प्राइस में भी हाइक, मतलब बढ़ता चला जाता है, और SBI ATM में भी कुछ झटके आपको मिल सकते हैं। और चौथा जो बदलाव है TV, फ्रिज और AC खरीदना थोड़ा सा आपके लिए महंगा हो जाएगा। और पांचवा जो बदलाव है FD रेट से कुछ जुड़े हुए जो रूल्स हैं वो अपडेट किए जाएंगे, और FD ब्याज दर की डिटेल रोजाना सुबह 10 बजे तक अपडेट करनी होगी। ये बैंकों को निर्देश दिए जा रहे हैं। और कल हमें देखना होगा कि LPG गैस सिलेंडर पर दाम बढ़ते हैं या घटते हैं, या यथास्थिति वही संभव रहेगी जो पहले थी। 14 किलो वाले जो घरेलू सिलेंडर का जब मैं जिक्र कर रहा हूं तो उसकी जो कीमतें थी लास्ट महीने वही स्थिर थी। लेकिन अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल योर सुरशादा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

ऐसे मस्करी सुनने के लिए, जानने के लिए अपडेट सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। आज जिनका जन्मदिन है अर्थात आज जिनकी जयंती है, किसी को आज आप याद भी कर रहे होंगे, साथ ही साथ पैरेलल पितृपक्ष चल रहे हैं और हम अपने बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखें क्योंकि वो हमारे आसपास हैं। अक्सर हम नाराज़ हो जाते हैं, उनसे परेशान हो जाते हैं, लेकिन फिर हम बाद में याद करते हैं कि उनकी बातें सच्ची थी, अच्छी थी। कहते हैं बड़े बुजुर्गों के बारे में कि अगर बड़े बुजुर्ग आपके घर पर बैठे हैं तो पीठ भारी है, मतलब कोई मुखिया है जो हमें गाइड कर रहा है, ऐसा करना है, वैसा करना है। और कल्पना करिए कि जब कोई हमारे पास नहीं होता, सच बात तो ये कि जिंदगी में आना जाना लगा ही रहता है, तो बड़ा दुख होता है कि काश बाऊजी यहाँ होते, काश माँ वहां होती तो हमें गाइडेंस मिलती रहती। गुड मॉर्निंग, मैं हूं गगन आपके साथ। कुल मिलाकर अपनी फैमिली का ख्याल रखिए और समाज में एक अच्छा सटीक एग्जाम्पल सेट करिए, क्योंकि हमें सभी का ख्याल रखना है। चलिए, आज जिनका जन्मदिन है उनको बहुत बहुत दिली दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जिनको हम याद कर रहे हैं उनको भी हमारी तरफ से नमन। एक ऐसी शख्सियत के बारे में जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि बात करनी चाहिए। पंडित श्रद्धाराम शर्मा, जन्म 1837, सनातन धर्म की बेहद प्रसिद्ध और घर घर में गाई जाने वाली जो आरती है ओम जय जगदीश हरि के, जगदीश हरे के जो रचयिता हैं, महान स्वतंत्रता सेनानी और हिंदी साथ ही साथ पंजाबी के प्रसिद्ध साहित्यकार पंडित श्रद्धाराम शर्मा का आज जन्मदिन है। और इस आरती के रचयिता जो श्रेय जाता है ओम जय जगदीश हरे, वो जाता है पंडित श्रद्धाराम शर्मा जी को। इनको बहुत बहुत आभार और बहुत शुभकामनाएं जहां पर भी रहें, बस ऐसी हिंदुस्तान पर कृपा बनाए रखेगा। और आज फिल्म इंडस्ट्री के एक और दिग्गज ऋषिकेश मुखर्जी को भी हम याद कर रहे हैं। आनंद को कैसे भूल सकते हैं, गोलमाल आनंद चुपके चुपके। वक्त का इशारा, दीपा मलिक का भी आज बर्थडे, 1970 में इनका जन्म हुआ। शान का भी आज बर्थडे है, शांतनु मुखर्जी का, और जिनका आज बर्थडे उनको सभी को बहुत बहुत दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। वक्त का इशारा, मैं होता हूं 9:11। हाय हाय रेशम का सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही वन एंड ओनली सुरु शारदा 90.8 FM। कल होगी फिर आपसे मुलाकात। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड नमस्कार।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो? तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चले।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: कम एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट व्हिच मेक्स यू इंडस्ट्री रेडी।
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: सो वेयर आर यू? द वर्ल्ड इज हियर एट शारदा University।
5: आप सुन रहे कार्यक्रम सेहत सही लाभ कही और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। और आज हम आए हैं तुगलपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर और हमारे साथ में है डॉक्टर ऋषिका। उनसे हम बात करेंगे किस तरह से जो गर्भवती महिलाएं हैं वो अपना ध्यान रखें, दूध पिलाने वाली जो महिलाएं हैं वो किस तरह से अपने पोषण का ध्यान रखें, बच्चों के पोषण का कैसे ध्यान रखें। तो सबसे पहले डॉक्टर ऋषिका जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
6: थैंक यू।
5: और हम आपसे यही जानना चाहेंगे, अपना जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है तुगलपुर में, तो खास करके यहाँ पर क्या क्या स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को दी जाती हैं?
6: जो हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसमें मेनली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमारा प्रायोरिटी पे होता है वो होता है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन में टीके लगते हैं गर्भवती महिलाओं को और जो छोटे बच्चे होते हैं उनको टीके लगते हैं। और जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके जैसे डिलीवरी का पूरा ध्यान रखना, आयरन कैल्शियम प्रोवाइड करना, उनके टीके का, उनका रिपोर्ट वगैरह, उनके छोटी मोटी प्रॉब्लम्स जो भी वो फेस करती हैं, और इवन डिलीवरी के बाद जब बच्चे को कोई अगर दिक्कत हो, ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह में दिक्कत हो, ये सब सर्विसेज हमें प्रोवाइड की जाती हैं।
5: और इसके अलावा जैसे कोई यहाँ पर आसपास के मरीज भी आते हैं तो क्या क्या इलाज होता है या कौन कौन सी जाँचें यहाँ पे हो जाती हैं?
6: हाँ जी, सामान्य बीमारी जैसे आजकल स्वाइन फ्लू वगैरह बहुत चल रहा है, जैसे जो वायरल वगैरह चलता रहता है उसका हो जाता है। बाकी कोई स्किन डिजीज है जैसे फंगल इन्फेक्शन, रैशेज, एलर्जी वगैरह, इसकी भी फैसिलिटीज हैं। उसके बाद बहुत सारे हमारे पास एल्डरली पेशेंट्स आते हैं जिनके जॉइंट पेन वगैरह होता है, तो उसका भी इशू सॉल्व हो जाता है यहाँ पर। एंड यहाँ पे NCD स्क्रीनिंग होती है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज लाइक शुगर एंड BP। शुगर की दवाई मिलती है, BP की जाँच हो जाती है, तो डेंगू मलेरिया की जांच होती है, प्लस यहाँ पे HIV, सिफिलिस,

0: इस सब की भी जांच होती है, एचपी की और हेपेटाइटिस की भी जांच हो जाती है।
1: तो कहने का मतलब यह है आपका कि जो भी सामान्य बीमारियां होती हैं, जो लोग बहुत पैसा बाहर खर्च करते हैं, उनकी जो जांच है यहाँ पर निशुल्क हो जाती है। आपने बात की थी खास करके जो गर्भवती महिलाओं की या दूध पिलाने वाली महिलाओं की, तो बच्चों के लिए माँ का जो पहला दूध होता है कितना महत्वपूर्ण होता है स्वास्थ्य के लिए?
0: बहुत महत्वपूर्ण होता है। इवन मतलब कि 6 महीने तक तो बोला जाता है कि बच्चे माँ का दूध ही बच्चे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और माँ के दूध में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। मतलब कि जो छोटे बच्चों के इन्फेक्शन वगैरह होते हैं उससे लड़ने की ताकत, इम्यूनिटी लाइफ लॉन्ग जो प्रोवाइड करती है, क्योंकि बच्चे जब बॉर्न होते हैं तो इम्यून सिस्टम उनका बहुत वीक होता है, तो उनको ना ब्रेस्ट मिल्क से ही जो मदर सिक्रीट करती है ब्रेस्ट मिल्क, उसमें काफी एंटीबॉडीज वगैरह होती हैं जो बच्चे को हेल्प करती हैं उन बीमारियों से लड़ने के लिए।
1: तो कहने का मतलब यह है आपका कि माँ को अपना जो दूध है वो बच्चों को जरूर पिलाना चाहिए। इसके अलावा जो गर्भवती महिलाएं, खासकर देखा जाता है कहीं ना कहीं उनमें खून की कमी हो जाती है, तो इसकी क्या वजह होती है और गर्भ में पल रहा बच्चा है उस पर खून की कमी का क्या कुछ असर होता है?
0: हाँ जी, खून की कमी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कॉमन है। फीमेल्स में वैसे भी थोड़ा हीमोग्लोबिन मेल्स के मुकाबले कम ही रहता है, इसके लिए आयरन की टैबलेट्स हमारे पीएससी में मिलती है, और ये आयरन की टैबलेट्स मैंडेट्री होती हैं। इवन मतलब कि फर्स्ट 3 मंथ्स फॉलिक एसिड खानी होती है, उसके बाद आयरन की टैबलेट्स दी जाती हैं। अगर खून की ज़्यादा कमी होती है तो आयरन की टैबलेट्स जिनमें 2 बार इवन दी जाती हैं। और इसके साथ साथ हम लोग मदर को एडवाइस करते हैं कि अपने खान पान पर बहुत ध्यान देना है, जैसे हरी सब्जियाँ जैसे पालक साग ये सब खानी है जिससे खून बनता है, चुकंदर का जूस हम दिन को बोलते हैं। हम उनको इवन विटामिन सी भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें विटामिन सी से आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ता है, तो ये सब उनको एडवाइस करते हैं और उनका एचबी की जांच करते हैं, और अगर कमी होती है तो हम आयरन की टैबलेट्स पूरी प्रॉपर उनको प्रोवाइड करते हैं, और इवन कैल्शियम भी, कि उनको कैल्शियम की भी कमी हो जाती है मदर को, क्योंकि प्रेगनेंसी के वक्त क्या होता है आयरन कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, तो उसको जितना चाहिए होता है वो लेता ही है। इससे क्या होता है मदर में कमी हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो ना इसमें ना हम लोग जो फीमेल्स हैं उनका वेट मेजर करते हैं, हमें लग रहा है कि बहुत कमज़ोर है, अंडर वेट है, तो हम उन्हें एक चार्ट बना के देते हैं, उन्हें बस एडवाइस करते हैं कि आपको दिन में 2 बार एटलीस्ट दाल पीनी है, आपको एक अच्छा आहार लेना है जिसमें सलाद होना चाहिए, कुछ प्रोटीन का सोर्स होना चाहिए, और दूध पीना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक ग्लास हमेशा पीना है, तो ये सब तो हम उसको एडवाइस करते हैं।
1: और साथ ही साथ जैसे कोई गर्भवती महिला है तो कौन कौन सी जांचें कराना बहुत जरूरी होता है गर्भावस्था के दौरान?
0: गर्भावस्था के दौरान हम लोग पहले तो उसका हीमोग्लोबिन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता ही है हमारे देश में एनीमिया मुक्त भारत एक वो भी चल रहा है कि हमें करना है, तो हीमोग्लोबिन का तो हर बार जब वो आती है तो जांच होती है। उसके बाद हम लोग उसका आरबीएस करते हैं, ब्लड शुगर, क्योंकि कई बार वो भी होता है, जेस्टेशनल डायबिटीज भी होती है, तो जैसे डायबिटीज़ हो जाती है प्रेगनेंसी के वक्त, तो उसके लिए हम लोग शुगर का भी टेस्ट करते हैं, बीपी, क्योंकि क्लेम्शिया वगैरह होता है तो बीपी भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ज़्यादातर फीमेल्स का बीपी कम रहता है, तो हम इन्हें ग्लूकोज के पैकेट्स या ORS या बहुत ज़्यादा पानी पीने को कहते हैं। और उसके अलावा HIV की जाँच हो जाती है, सिफिलिस की जाँच हो जाती है, हेपेटाइटिस बी की जाँच हो जाती है, और डेंगू मलेरिया भी हम लोग फीमेल्स में करते हैं, और साथ ही प्रेग्नेंट फीमेल्स में 2 टीके लगते हैं टेटनस और डिपथीरिया के लिए, ताकि न्यूनेटल टेटनस बच्चे को ना हो, तो उसके लिए 2 टीके लगाए जाते हैं, उनको हम लोग ट्रैक करते हैं, उनका हम लोग पूरा डिटेल्स लिख के, और उनको टाइमली बुलाना, फ़ोन करना, ये सब चीज़ें हम करते हैं, उनका वेट वगैरह नापना, ये सब भी होता है।
1: तो क्या कुछ जागरूकता के कार्यक्रम भी आपके द्वारा चलाए जाते हैं?
0: हाँ जी बिल्कुल, हमारे यहाँ 5-6 NMA और 3 आशाएं हैं, ये आशाएं डोर टू डोर विजिट करती हैं, और उनको संचारी, जैसे हमारे यहाँ प्रोग्राम चल रहा है संचारी में, क्या होता है कि डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए जो चीज़ें टेक्निक्स होती हैं, जैसे कि कभी गंदा पानी इकट्ठा नहीं होने देना है, गमलों में पानी नहीं होना चाहिए, और किसी टायर वगैरह में पानी तो नहीं है, या फिर कूलर वगैरह में पानी तो नहीं है, या फिर यहाँ पे लोग पानी स्टोर करके रखते हैं, तो उसमें करना, उनको एडवाइस करना कैसे क्या करना है, तो ये सब भी किया जाता है। और इवन यहाँ पे कुछ मोबाइल यूनिट्स भी आते हैं, तो जिससे जागरूकता के लिए उसमें स्पीकर होता है, वो लोग चलती हैं गाड़ियाँ, ताकि लोग और ज़्यादा अवेयर हो सकें, आशा भी जाती है हमारी उसके साथ।
1: अच्छा, संडे के दिन आपके यहाँ पे कुछ खास कार्यक्रम चलता है, तो उसके बारे में बताइए, क्या वो प्रोग्राम है?
0: हाँ जी, एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि संडे को ज़्यादातर अस्पताल बंद रहते हैं, बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता था, और ऐसे पहले था भी, बट अभी कुछ टाइम से आरोग्य मेला संडे को लगता है, तो PSC 7 दिन खुला रहता है, जैसे लोग जो जॉब वाले हैं जिनको टाइम नहीं मिलता है, तो वो संडे को दिया, आप आके यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।
1: यानी कि संडे के दिन भी जो भी किसी को परेशानी है स्वास्थ्य संबंधी, वो यहाँ पर अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जैसे कि अपना यहाँ प्रवासी मजदूर बहुत ज्यादा रहते हैं, और आजकल कुत्तों की संख्या भी, बंदरों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, और वो काट भी लेते हैं, तो ऐसे में क्या जो इनके टीके लगते हैं वो सुविधा अपने है यहाँ पर?
0: हाँ जी बिल्कुल है, बेबीज के इंजेक्शन लगते हैं, ARV के इंजेक्शन बिल्कुल यहाँ पे अवेलेबल है, कभी भी कोई दिक्कत होती है तो हम लगाते हैं।
1: चलते चलते आपसे जानना चाहेंगे फैमिली प्लानिंग के बारे में, तो इस पर भी आपके यहाँ से कुछ चर्चाएं होती हैं महिलाओं के साथ, और फैमिली प्लानिंग कितना जरूरी है?
0: फैमिली प्लानिंग हमारे देश में जहाँ आपकी सबसे ज्यादा आबादी है पूरे वर्ल्ड में, तो बहुत ही जरूरी है और गवर्नमेंट बहुत इसके लिए मेथड्स ले रही है, लेकिन इतने सारे कैंपेन शुरू कर रखे हैं, दो बच्चे अच्छे और इस तरह के, वो तो करती है गवर्नमेंट, पर इसके साथ साथ हमारे PHC पे एक तो कॉन्डम्स मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आप कभी भी ले जा सकते हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स भी मिलते हैं, लाइक निक्षे वगैरह जो मिलता है लेके आपको अगर टेस्ट करना हो प्रेगनेंसी का। इसके साथ साथ माला एन मिलती हैं टैबलेट्स, कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट्स होती हैं, और सहेली वगैरह भी मिलती हैं, प्लस इसके साथ साथ इंजेक्शन भी लगते हैं, हर 3 महीने पर लगते हैं वो अंतरा के इंजेक्शन, तो ये सब फैसिलिटीज़ भी हमारे यहाँ हैं। जो हमारे यहाँ महिला आती है पहले तो हम उनकी मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं कि उनके कितने बच्चे हैं घर में कितना क्या है, और पहले सबसे पहले हम उनको स्पेस्ड प्रेगनेंसी के लिए एडवाइस करते हैं कि हर बच्चे में एटलीस्ट 3 साल का गैप होना चाहिए। हमारे यहाँ एक्चुअली यही होता है कि ज़्यादातर 1-1 साल का गैप होता है, इससे क्या होता है मदर की हेल्थ पर बहुत फ़र्क पड़ता है और अल्टीमेटली बच्चे की हेल्थ पर भी फ़र्क पड़ता है, सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं मेंटल हेल्थ पे भी उनके बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि घर में बहुत छोटे बच्चे अगर 2-3 हों तो बहुत दिक्कतें होती हैं, तो उन्हें तो हम पहले ये एडवाइस करते हैं कि अगर आपने अभी बच्चा किया है तो एटलीस्ट 3 साल का गैप रखिए ताकि आपका स्वास्थ्य थोड़ा रिकवर हो सके। उसके साथ साथ अगर उनके 2 बच्चे से ज़्यादा हैं तो हम उनको यही बोलते हैं कि हमारे यहाँ उनको हम काउंसिल करते हैं कि हमारे यहाँ ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, आप प्लीज़ आइए और सबको इस सब का लाभ उठाइए, और हम उनको बताते ही हैं मतलब आजकल के ज़माने में जहाँ पे इतनी महंगाई है और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, तो हम उनसे थोड़ा बात करते हैं, उनके पर्सनल लेवल पे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, उन्हें समझाते हैं।
1: बिल्कुल डॉक्टर ऋषिका जी, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने आज रेडियो के माध्यम से हमारे श्रोताओं तक, खास करके जो समुदाय के लोग हैं उन तक पहुँचाई है हमसे बात करने के लिए और जानकारी देने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहाँ सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन, और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। जैसा कि आप जानते हैं, सुनो शारदा 90.8 FM और स्मार्ट के सहयोग से हम एक कार्यक्रम लेकर आते हैं जिसका नाम है सेहत सही लाभ कई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही रहता है कि आप स्वस्थ, सतर्क और जागरूक रहें, जिससे हमारा भारत खुशहाली में दुनिया की अग्रिम पंक्ति में शामिल हो। और खुशहाली के लिए जरूरी है शरीर का स्वस्थ होना। अधिकतर देखा जाता है कि लोग कुछ संक्रामक बीमारियों को अनदेखा कर देते हैं और उनके बारे में जानने की कोशिश भी नहीं करते। ये बीमारियां हैं लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, हाथी पांव के नाम से ज्यादा इस बीमारी को जाना जाता है, कालाजार, डेंगू बुखार, कुष्ठ रोग और रेबीज। ये सब उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग बीमारियों का समूह है जो दुनिया भर में 1 अरब से ज्यादा लोगों को प्रभावित करता है, यानी कि दुनिया की आबादी का 1/8। ये संक्रामक बीमारियां दुनिया के सबसे असुरक्षित लोगों को प्रभावित करती हैं, जिनके पास स्वच्छ पानी, बुनियादी स्वच्छता या यूं कहें जिनके पास पर्याप्त स्वास्थ्य सेवा नहीं है, जिससे इन समुदायों के लिए स्वस्थ और अच्छा जीवन जीना कठिन हो जाता है। फाइलेरिया के बारे में तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, बहुत सारी बातें आपने जानी होंगी, लेकिन आज हम बात करेंगे कालाजार बीमारी के बारे में, जिसको कि काला बुखार, ब्लैक फीवर के नाम से भी जाना जाता है। और इस बीमारी के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर अपूर्वा शेट्टी, MD मेडिसिन, और आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं शारदा हॉस्पिटल में। तो सबसे पहले डॉक्टर अपूर्वा, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: और जैसा कि आज का हमारा विषय है कालाजार जो बीमारी है, इसके बारे में हम अपने श्रोताओं को बताएंगे, सुनने वालों को बताएंगे क्या उसके लक्षण होते हैं, कैसे इस बीमारी का संक्रमण होता है, कैसे इससे बचा जा सकता है, उपचार क्या है और इसका परीक्षण कैसे होता है, टेस्ट कैसे होता है, इन सब बातों की जानकारी बारी बारी से हम आज आपसे लेंगे। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो कालाजार है, जिसको कि काला बुखार या डमडम फीवर भी कहते हैं, तो ये आखिर है क्या?
1: कालाजार को लेश्मिनियासिस भी बोला जाता है। ये एक पैरासाइट लेश्मिनिया डोनोवानी से फैलता है। ये आलू मक्खी के अंदर होता है। अगर आलू मक्खी इंसानों को काटता है तो ये कालाजार बीमारी फैल सकता है। तो पैरासाइट ये होता है कि एक परजीवी होता है, जो जीव जिस जीव के अंदर रहता है या बाहर रहता है उन पे ही वो पूरा निर्भर रहता है, तो उसको पैरासाइट कहला जाता है।
0: बिल्कुल। तो हमारे जो सुनने वाले हैं ये जान गए होंगे कि जो कालाजार बीमारी है, जिसको कि काला ज्वर, काला बुखार, डमडम फीवर के नाम से जाना जाता है, एक परजीवी के द्वारा ये बीमारी फैलती है। परजीवी के बारे में भी आप जान गए होंगे कि ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी और पर डिपेंड रहते हैं, निर्भर रहते हैं, अपना जो भोजन है वो खुद नहीं बना सकते, उनको परजीवी कहा जाता है। तो अब बात कर लेते हैं, ये जो परजीवी है जिसके जरिए कालाजार फैलता है, उस परजीवी के बारे में हम जानना चाहेंगे कि ये जो परजीवी है, पैरासाइट है, कैसे वो अटैक करता है हम इंसानों पर।
1: ये सैंडफ्लाई है, उसमें ये परजीवी रहता है, दैट इज लेश्मिनियासिस डोनोवानी। अगर आलू मक्खी आपको काटता है तो ये पैरासाइट आपके अंदर खून में फैल सकता है। मोस्टली इफेक्ट करता है आपके लिवर, स्प्लीन, बोन मैरो और लिम्फ नोड्स पे, और इन्फेक्शन कॉज कर सकता है।
0: बिल्कुल। तो हमारे सुनने वाले ये जान गए होंगे कि जो पैरासाइट है, उसका नाम भी आपको पता चल गया होगा कि कौन सा ये पैरासाइट है। एक बार फिर से मैं आपको याद दिला देता हूँ, लेश्मिनिया डोनोवानी, ये जो पैरासाइट है वो बालू मक्खी के अंदर पाया जाता है, और जो बालू मक्खी है जब हम इंसान को काटती है तो उसके जरिए ये ब्लड में पहुंच जाता है और इन्फेक्शन करना शुरू कर देता है। आगे भी बहुत कुछ जानेंगे डॉक्टर अपूर्वा शेट्टी से, लेकिन यहाँ पर लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक, जल्दी से लौट के आते हैं। आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन।

0: एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आज आपके साथ शशि कपूर। जैसा कि आप जानते हैं, सुनो शारदा 90.8 FM और स्मार्ट मिलकर कार्यक्रम चला रहे हैं जिसका नाम है सेहत सही लाभ कई। उसी के अंतर्गत आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं और आज हम बात कर रहे हैं काला जार की। जैसा कि अभी तक आपने जाना कि जो काला जार बीमारी है वो क्या है, क्या इसके कारण होते हैं और कैसे जो इसका संक्रमण है वो फैलता है, परजीवी कौन सा होता है, तो ये सब आप जान गए होंगे। अब बात कर लेते हैं डॉक्टर अपूर्वा यहाँ पर कि जो काला जार है, अगर किसी व्यक्ति में इसका इन्फेक्शन हो जाता है तो कोई कैसे पहचान करेगा कि ये काला जार बीमारी के लक्षण हैं? लक्षणों के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे।
1: कई दिनों से बुखार आना, वजन कम होना, अनीमिया, बाल झड़ना, हल्के त्वचा वालों में हाथ पैर चेहरा का रंग काला पड़ना, और इसीलिए इसके नाम पे गया है काला आजार।
0: बिल्कुल, तो ये तो बात रही लक्षणों की कि अगर आपको अतिबर बना रहता है, आपकी जो त्वचा का रंग है वो काला हो जाता है, और भी बहुत सारे लक्षण आपने बताए हैं जिनको के देख के ये कहा जा सकता है कि इनको काला आजार का संक्रमण हो चुका है। अब बात करते हैं कि मान लीजिए ये तो हम संभावित बात कर रहे हैं कि इनको ये हो सकता है, अब वो कौन कौन सी जांच होती है जिसके जरिए ये कन्फर्म किया जाता है, पुष्टि की जाती है कि हाँ इस व्यक्ति को काला आजार की बीमारी हो चुकी है?
1: डॉक्टर ये क्लिनिकल सिम्टम्स से ही पहचाने जाएंगे, और उसके बाद जब पहचाना जाता है कि ये काला आजार हो सकता है तो थोड़े ब्लड टेस्ट कराएंगे। उसमें बहुत सारे टेस्ट है, जैसे एक रैपिड टेस्ट है RK39 और माइक्रोस्कोपिक टेस्ट है जहाँ पे पैरासाइट को हम देख सकते हैं, और PCR एंड ELISA टेस्ट है जहाँ पे हम ये इन्फेक्शन कन्फर्म कर सकते हैं।
0: तो ये तो बात रही काला आजार जो बीमारी है इसकी पुष्टि की। आगे भी बातें हम करते रहेंगे और भी बहुत सारी बातें जिनको जानना बहुत जरूरी है, लेकिन यहाँ पर रुकते हैं, एक और म्यूजिकल ब्रेक यहाँ लेते हैं, उसके बाद लौट के आते हैं। आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन।

0: एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। और आज हम बात कर रहे हैं कालाजार के बारे में। कालाजार एक बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है, तो इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए, यानी कि कालाजार बीमारी के बारे में विस्तार से बात करने के लिए, आपको जागरूक करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अपूर्वा शेट्टी, MD मेडिसिन, और आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं शारदा हॉस्पिटल में। अभी तक जैसा कि डॉक्टर अपूर्वा, हमने आपसे जाना कि कालाजार बीमारी क्या है और इसके लक्षण क्या है, कारण क्या हो सकते हैं, और कैसे इस बीमारी का संक्रमण मनुष्यों में होता है, और खासकर ये जो बीमारी है बॉडी के किन अंगों को प्रभावित करती है, सब हमारे जो सुनने वाले हैं, हमारे लिसनर हैं, वो जान चुके हैं। अब बात करते हैं कि इसके नियंत्रण की, बचाव की, तो कैसे इससे बचा जा सकता है, कैसे इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है।
1: पहले तो स्वच्छता मेंटेन करना है, आसपास जहाँ पे पानी भरा हो तो वहाँ पे पानी इकट्ठा ना होने दे, और इंसेक्टिसाइड स्प्रे मतलब कीटनाशक का स्प्रे छिड़काव घर पे जरूर करवाएं। घर की भीतरी दीवार, शौचालय, गौशाला, रसोई, कोई जगह कीटनाशक छूटना ना पाए। और अगर कीटनाशक लगवाए हैं तो उनको धुलाई, पेंट या चूना 1.5 महीने तक ना कराएं, और फुल बाजू के कपड़े पहने, और रात के या शाम के समय पे बाहर की एक्टिविटीज ना करें, घर पे रहे, और मच्छरदानी का प्रयोग करें।
0: बिल्कुल, कहने का मतलब बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। अपने घर के आसपास पानी ना जमा होने दें, गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि जब गंदगी होती है तो कीट जो होते हैं वो आकर्षित होते हैं गंदगी की तरफ, और फिर वो हम तक पहुंच जाते हैं। साथ ही साथ अपने आसपास जो कीटनाशक होते हैं, कीटों को खत्म करते हैं, उनका स्प्रे भी करते रहना चाहिए, ताकि कीटों पर नियंत्रण किया जा सके और फिर वो हम तक ना पहुंच पाए। आगे हम जानेंगे इस बारे में कि अगर किसी व्यक्ति को ये बीमारी हो जाती है तो उसका उपचार क्या है, तो उपचार के बारे में भी डॉक्टर अपूर्वा से जानेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर सुनते हैं एक सॉन्ग और उसके बाद लौट के आते हैं। आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM, आपके ग्रेटर नोएडा का रेडियो स्टेशन।

0: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। और आज हम बात कर रहे हैं कालाजार के बारे में। और इस बीमारी के बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अपूर्वा शेट्टी। उनसे बातों का सिलसिला चल ही रहा है और बहुत सारी बातें आप जान भी गए होंगे। एक बार फिर से हम आपको बता दें, जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं कालाजार के बारे में, तो अब तक जो बातें हो चुकी हैं, कालाजार बीमारी क्या है, इसके लक्षण क्या होते हैं, कारण क्या हो सकते हैं, शरीर के किन अंगों को ये बीमारी प्रभावित करती है और इसका जो इन्फेक्शन है वो कैसे फैलता है, इस पर नियंत्रण या इससे बचाव कैसे किया जा सकता है, ये सब बातें आप जान चुके हैं। और अब बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट की, यानी कि उपचार की। तो डॉक्टर अपूर्वा, अब आपसे जानना चाहेंगे, अगर किसी व्यक्ति को ये बीमारी हो जाती है तो क्या उसका उपचार है और ट्रीटमेंट के बाद क्या वो व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ हो सकता है?
1: इलाज योग्य बीमारी है ये, उपचार छोड़ दिया जाए तो घातक हो सकता है। तो सारे ड्रग्स जो है डॉक्टर आपको दे देंगे जिससे ये इलाज हो सकता है। कमजोर प्रतीक्षा प्रणाली वालों को इससे गंभीर रूप से प्रभावित होने का खतरा है, तो ध्यान रखना जरूरी है कि इलाज सही से और जल्दी से लिया जाए।
0: कहने का मतलब आपका ये है कि जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर की कम होती है, यानी कि उनकी इम्यूनिटी डाउन होती है, तो वो ऐसे व्यक्ति इस बीमारी के चपेट में जल्दी आ जाते हैं। तो उनको अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए, यानी कि पौष्टिक आहार करना चाहिए। तो इस बात का जरूर हमारे जो सुनने वाले हैं वो ध्यान रखेंगे और अपने आसपास लोगों को अवेयर भी करेंगे इस बारे में। ये भी बड़ी अच्छी बात है कि अगर बीमारी हो जाती है तो आप इसका पूरा इलाज करवाते हैं तो इस बीमारी से मुक्ति पा सकते हैं। इसके अलावा एक और बात यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, उनके टीके आ चुके हैं, उनका टीका लग जाता है तो उस बीमारी का असर नहीं होता है, तो क्या कालाजार इसका भी कोई टीका है जिसको के लगवाने से इस बीमारी का व्यक्ति पर असर ना हो?
1: नहीं, अभी तक कोई टीका अवेलेबल नहीं है, पर जरूर गवर्नमेंट ट्राई कर रही है, देयर इज डेवलपमेंट टुवर्ड्स द वैक्सीनेशन टू कालाजार।
0: तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि कालाजार बीमारी की रोकथाम के लिए जल्दी से जो टीका है वो उपलब्ध हो।
1: समराइज करना चाहूंगी कि ये बीमारी गंदगी से फैलती है, क्योंकि सैंडफ्लाई गंदगी में आती है, तो आपके आसपास स्वच्छता रखें, ध्यान रखें कि आप क्लीनलीनेस मेंटेन करें।
0: बिल्कुल, तो जागरूक रहना बहुत जरूरी है, साथ ही साथ साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि बीमारियां जितनी भी होती हैं वो ज्यादातर आप साफ सफाई की तरफ ध्यान नहीं देते हैं तभी वो आप तक पहुंच जाती हैं। तो इन बातों का आप जरूर ध्यान रखें, इसलिए हम बार बार रेडियो के माध्यम से आपको जागरूक करते रहते हैं कि आप अपने आसपास अपने घर का और अपने परिवार का जरूर ख्याल रखिएगा और जो स्वच्छता के नियम है उनको जरूर अपनाएं और देश की तरक्की में अपना साथ दें। डॉक्टर अपूर्वा, आज आपने रेडियो के माध्यम से हमारे जो सुनने वाले हैं उनको इतनी अच्छी जानकारी दी कालाजार बीमारी के बारे में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर अपूर्वा शेट्टी, MD मेडिसिन, असिस्टेंट प्रोफेसर शारदा हॉस्पिटल से। और अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, फिर किसी प्रोग्राम में होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।

0: भाई।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

हाय, मैं उरन विजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: Sharda School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.

किसान मित्रों नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनूर शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर, लेकर हाजिर हूं वही आपका मन पसंद कार्यक्रम खेत खलियान। किसान मित्रों, आज के समय में एक बड़ी समस्या का सामना हमारे ग्रामीण बहन भाई कर रहे हैं कि उनको स्थानीय स्तर पर रोजगार नहीं मिल पाता है, और रोजगार नहीं मिल पाता है तो वो रोजगार के लिए शहर की तरफ पलायन करते हैं। अब शहर में आ जाते हैं तो यहाँ पर भी रोजगार पाना इतना आसान नहीं होता है, ऐसी जगह रहना पड़ जाता है कि बहुत घनी आबादी है, मलिन बस्ती है, ऐसे में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बड़ा ही चुनौतीपूर्ण कार्य बन जाता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में संक्रामक बीमारियों के फैलने का चांस ज्यादा होता है, और कई बार ऐसी जगह काम करना पड़ जाता है जहाँ 12-12 घंटे काम करना पड़ता है, और ऐसे में कब खाना खाना है, कब बनाना है, कब सोना है, कब जागना है, सारी जो दिनचर्या है वो गड़बड़ा जाती है, और इन सब का आपके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है जिसकी वजह से आप अस्वस्थ होने लग जाते हैं। अब इतना पैसा शहर में आके कमाया वो सब आपके स्वास्थ्य पर लग गया, बचा क्या, और कई बार तो स्वास्थ्य ठीक भी नहीं होता और कर्ज भी हो जाता है। तो इसका समाधान क्या है कि किस तरह से हमारे जो युवा हैं या अन्य ग्रामीण बहन भाई हैं वो गांव में रहकर ही कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बनाएं ताकि अपने गांव में शुद्ध हवा, शुद्ध खान पान के साथ साथ उनको रोजगार भी मिले। तो ऐसे में हमारे जो युवा साथी हैं उनको स्थानीय स्तर पर आज की जो मांग है उसके अनुसार आप कोई ना कोई कौशल जरूर सीखें, और साथ ही साथ आजकल तो डिजिटल तकनीकों का जमाना है तो आप इसका प्रयोग भी प्रभावी तरीके से कर सकते हैं। साथ ही स्थानीय युवाओं को हमारे कृषि आधारित उद्योगों जैसे डेयरी, प्रोसेसिंग, हस्तशिल्प और कौशल विकास कार्यक्रमों से जोड़कर गांव में ही आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। अब स्थानीय स्तर पर हम कौशल विकास की बात करें तो कोई ना कोई कौशल विकास सेंटर आपके आसपास जरूर होगा, तो वहां पर आप अपनी रुचि के अनुसार प्रशिक्षण ले सकते हैं और फिर कार्य कर सकते हैं। आप मोबाइल रिपेयरिंग सीख सकते हैं, खाद्य प्रसंस्करण है, मशीन का रखरखाव है, और सिलाई है, कढ़ाई है, ये सारी चीजें आप सीख करके अपने गांव के आसपास गांव में ही रोजगार हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो युवा साथी हैं वो CSC सेंटर यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर, जन सुविधा केंद्र खोल सकते हैं, तो उसमें भी अच्छा खासा आपका रोजगार हासिल हो जाता है। लघु और कुटीर उद्योग की बात करें तो गांव में छोटे उद्योग जैसे अगरबत्ती, मोमबत्ती, अचार, पापड़ या जूट के उत्पाद, जिससे स्थानीय महिलाओं और युवाओं को रोजगार मिल सके। और अब बात करें हम कृषि और इससे संबंधित क्षेत्र की, तो खेती के अलावा डेयरी, पशुपालन, मछली पालन और मधुमक्खी पालन जैसे क्षेत्र में भी हमारे युवा प्रशिक्षण पा करके रोजगार हासिल कर सकते हैं और इससे साल भर आमदनी कर सकते हैं। तो जरूर इस तरफ युवा साथियों आप ध्यान दीजिएगा, आप स्वयं का छोटा व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं और इसके लिए सरकार सब्सिडी देती है, तो इस तरह से हमारे जो युवा साथी हैं, ग्रामीण बहन भाई हैं, उनका पलायन गांव से रुक सकता है। तो किसान बहन भाइयों, ये तो बात रही कि हुनर से कैसे हम रोजगार अपने गांव में हासिल कर सकते हैं और कैसे गांव से पलायन को रोक सकते हैं, और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक उपदेश। कलाकार हैं बलराम बैसला।

किसान बहन भाइयों, खेती में अधिक उत्पादन के लिए आपको अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग करना पड़ता है। अब इससे क्या होता है कि खेती में एक तो अत्यधिक लागत आती है और फिर हमारा जो जल है, भूमि है, वायु है और वातावरण, वो प्रदूषित होता है। साथ ही खाद्य पदार्थ भी जहरीले हो जाते हैं। इसीलिए इस प्रकार की सभी समस्याओं से निपटने के लिए जैविक खेती करने की सिफारिश हमारे कृषि वैज्ञानिक करते हैं कि आप जैविक खेती कीजिएगा और इसमें जैविक खादों का इस्तेमाल करें ताकि जो आपको उत्पाद मिले वो भी गुणवत्तापूर्ण हो और जो भी उसका उपयोग करे वो स्वस्थ रहे। तो भारत सरकार इस तरह की खेती को अपनाने के लिए प्रचार प्रसार कर रही है, साथ ही राष्ट्रीय जैविक खेती मिशन भी चला रही है जिसके तहत जैविक खेती करने वाले किसानों को वित्तीय सहायता भी दी जाती है और जैविक खेती करने के तौर तरीके सिखाए जाते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात किसान बहन भाइयों आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जो जैविक उत्पाद होते हैं उनकी बाजार में कीमत आपको बहुत ज्यादा मिलती है और दूसरी तरफ रासायनिक उर्वरकों के बेहिसाब प्रयोग से जो आपके खेत की मिट्टी है उसकी उर्वरा शक्ति दिन प्रतिदिन नष्ट होती चली जा रही है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति बचाने में जैविक उर्वरक काफी कारगर है। तो किसान बहन भाइयों, आप जैविक खेती करके कम लागत में अधिक उत्पादन कर सकते हैं और इसके लिए जरूरत है आपको जागरूक होकर जैविक खेती करने के तौर तरीके से भली भांति परिचित होने की, यानी कि तौर तरीके सीखने की। किसान मित्रों, आपको बता दें कि जैविक विधि द्वारा खेती करने से उत्पादन की लागत तो कम होती है, इसके साथ ही आप किसान भाइयों को आय अधिक प्राप्त होती है। जैसे कि हम पहले आपको बता चुके हैं, जैविक उत्पादों का बाजार में अच्छा दाम मिलता है और आधुनिक समय में निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या, पर्यावरण प्रदूषण, भूमि की उर्वरा शक्ति का संरक्षण और मानव स्वास्थ्य के लिए जैविक खेती की राह अत्यंत लाभदायक है। तो हमें सिर्फ अपना ही फायदा नहीं देखना चाहिए बल्कि जो प्रकृति है, वातावरण है, उसके बारे में भी सोचना चाहिए। तो जरूर आप जैविक खेती अपनाएं ताकि लागत कृषि में कम आए और आपको फायदा ज्यादा मिले। तो किसान बहन भाइयों, ये तो आपने जाना जैविक खेती के बारे में और आइए अब आपको सुनवाते हैं तरुण वाल्यान से ये रागनी।

किसान बहन भाइयों, अभी आप सुन रहे थे तरुण बाल्यान से ये रागनी। किसान भाइयों, आज के समय में खेती भी आधुनिक होती जा रही है। हमारे किसान भाइयों के आधुनिक विचार कृषि में क्रांति लाने का काम कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन बदलती उपभोक्ताओं की मांग और बाजार के बदलते स्वरूप ने हमारे किसान भाइयों को भी एक नए सिरे से खेती करने के लिए प्रेरित किया है। अब नई तकनीक और नई फसलों में आप किसान भाइयों की रुचि बढ़ रही है और इसी के साथ आप किसान भाई कम लागत में अधिक मुनाफा देने वाली फसलों की खेती कर रहे हैं। इन फसलों में मशरूम भी शामिल है। मशरूम ने बाजार में बहुत ही कम समय में अपना स्थान कायम कर लिया है। वर्तमान समय की बात करें तो शहरों से लेकर गांव तक लोगों के बीच मशरूम काफी पसंदीदा सब्जी बनती जा रही है। बाजार में पहले की तुलना में बदलते स्वरूप को देख आप किसान भी अब पारंपरिक खेती छोड़कर नए सिरे से खेती करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। साथ ही आप किसान भाई ऐसी खेती करके कम लागत में अधिक मुनाफा भी कमा रहे हैं और ये मशरूम की खेती फायदे का सौदा साबित हो रही है। किसान मित्रों, आपको बताना चाहूंगा कि पिछले कुछ समय से भारत में मशरूम की मांग बढ़ती जा रही है। मशरूम भले ही विदेशी सब्जी हो लेकिन भारतीयों के बीच बहुत लोकप्रिय हो चुकी है। यही कारण है कि बीते एक दशक से इसके उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। मशरूम जहां खाने का स्वाद बढ़ाती है तो वहीं किसानों के लिए भी वरदान साबित हो रही है, क्योंकि जो किसान भाई मशरूम की खेती करते हैं वो अच्छी खासी आमदनी कर रहे हैं अन्य परंपरागत फसलों की अपेक्षा। तो आप भी जरूर इस तरफ ध्यान दीजिएगा और आप मशरूम की खेती करना चाहते हैं तो आप अपने निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र जाइएगा और वहां पर बात कीजिए मशरूम की खेती के बारे में, कैसे बीज मिलता है, कैसे आप इसकी खेती कर सकते हैं, कैसे तैयारी करें, ये सब बातों की जानकारी आपको आपके कृषि विज्ञान केंद्र में मिल जाएगी। तो किसान मित्रों, ये तो जानकारी रही मशरूम की खेती के बारे में और आइए अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं एक उपदेश। कलाकार हैं उपेंद्र राणा

इसी उपदेश के साथ आज का खेत खलियान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी किसान मित्रों को नमस्कार।

0: नमस्कार और स्वागत है आपका टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में। आज के सब्जेक्ट को ध्यान से सुनिए और टीबी को हराने में मदद कीजिए। टीचर जी,
1: जी
0: प्लीज कैरी ऑन।
1: थैंक यू सर। आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स में जीरो लापरवाही। टीबी की जांच में देरी ना करें, बलगम की सही जांच कराएं। टीबी की दवाइयों के कोर्स को नियमित रूप से लें, नहीं तो इलाज मुश्किल हो जाएगा।
0: तो मतलब इस क्लास का सार है, लापरवाही करना टीबी से सिर्फ आधी लड़ाई जीतना।
1: यस सर, बिल्कुल करेक्ट।
0: तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: हाय, मैं हूं विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

मेहरबानो, कालिया ने कहा जब उसे दया दर्द आया, हरिया तने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया, उस दुखिया से कंगाली में तू चीर लेके आ गया, करके बदले उसे माफ कर देता, वो तो तेरा बेटा था।

मेरे दिल में आहे भक्ति थी, जब मेरी ब्याही मुझे हाथ पकड़ के डांटती थी, महाराज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी ब्याहता हूं और ये कमर रोहतास तुम्हारा इकलौता पुत्र है, तुम्हें दर्द नहीं आया? मेहरबानो कहने लगा, मैंने बज्जर की छाती करके अपनी ब्याही तस्वीर ले लिया, भला किसे अपने बेटे की मौत पर दुख नहीं होगा? मेहरबानो कहने लगा कालिया, तुझे ऐसा नहीं करना था। मेहरबानो रोष में आके फिर कह दिया हरिया ने, अरे कालिया तेरा नाश जागा, मेरी बात सुनने, तेरा अगर पेठा भर गया हो चीर लेने से, भला कैसे?

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कु ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
1: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।
4: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की में। आज हम बात करने वाले हैं कि विटामिन B12 की कमी से क्या क्या दिक्कतें परेशानियां हमारे सामने आ सकती हैं। बात करते हैं विटामिन B12 की कमी से शरीर और ब्रेन हो सकता है कमजोर। ये 5 फूड्स खाकर इस कमी को आप पूरा कर सकते हैं। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हो। जाहिर सी बात है कि इसके बारे में कुछ रोज पहले हमने बातें की थी, लेकिन अब हम इससे कुछ आगे बढ़ते हैं तो बात निकलकर ये सामने आती है कि विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए कुछ फूड्स बताए गए हैं, वो अगर आप खाते हैं तो निश्चित तौर पर इसका फायदा आपको आपकी सेहत में देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और विस्तार से बात करते हैं। विटामिन B12 की कमी की समस्या काफी कॉमन है, हालांकि कई बार लोग इसे अधिक गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विटामिन B12 की कमी हो जाने के बाद मसल्स में कमजोरी और जोड़ों में दर्द जैसी परेशानियां हो सकती हैं? विटामिन B12 DNA बनाने का काम करता है, जो ये नर्वस सिस्टम को काम करने में भी सहायता करता है। हमारा शरीर विटामिन B12 का उत्पादन खुद नहीं कर सकता, इसीलिए इसकी कमी होने की संभावना भी बढ़ जाती है। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हो। हम जानेंगे ऐसी फूड्स के बारे में जिनके सेवन से पर्याप्त मात्रा में विटामिन B12 पाया जा सकता है। बात करते हैं विटामिन बी की कमी क्यों होती है, ये भी जानना समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर प्रिया पालन के अनुसार उम्र बढ़ने के साथ लोगों के शरीर में विटामिन B12 की कमी होने की आशंका भी बढ़ जाती है। मसल्स में कमजोरी, हाथ पैर सुन्न हो जाना, एनीमिया और कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। विटामिन B12 की पर्याप्त मात्रा के लिए डॉक्टर पायल कुछ विशेष फूड्स के सेवन की सलाह देती है। चलिए जानते हैं, सालमन मछली की बात करते हैं। नॉन वेजिटेरियन फूड्स में विटामिन B12 पाया जाता है, इसके लिए आप सालमन और टूना मछली का सेवन कर सकते हैं। बात करते हैं हरी पत्तेदार सब्जियों के विषय में। विटामिन B12 से भरपूर फूड्स में हरी पत्तेदार सब्जियां और कई फलों का नाम भी शामिल है। केला, पालक और चौलाई जैसी सब्जियों का सेवन करने से आपको विटामिन B12 प्राप्त हो सकता है। वहीं सीजनल फ्रूट्स का सेवन भी करने से विटामिन B12 मिल सकता है। लो फैट पनीर के विषय में जानते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दही, पनीर, चीज और दूध का सेवन करने से विटामिन B12 की अच्छी मात्रा प्राप्त हो सकती है। डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन उन लोगों के लिए और भी महत्वपूर्ण है जो नॉन वेज नहीं खाते। दूध उन शाकाहारी फूड्स में से एक है जो विटामिन B12 से समृद्ध होते हैं, साथ ही इससे प्रोटीन और कैल्शियम भी प्राप्त हो सकता है। बात करते हैं मशरूम की। कैल्शियम और विटामिन डी के अलावा विटामिन B12 की अच्छी मात्रा मशरूम्स में पाई जाती है। वहीं मशरूम में प्रोटीन और कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। आशा करता हूं ये जानकारी का आपने लाभ उठाया होगा। ऐसी खास जानकारी सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
5: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
6: The world is here।

ससुराल में पहुंच गई और कई रोज गुजर गए, लेकिन जिसके साथ ब्याही थी नीरज उर्मिला से मिलने के लिए नहीं आए। प्रेमी दोस्तों, ये उर्मिला के लिए सबसे बड़ा वियोग और कलह का कारण बन गया। और एक दिन उर्मिला ने अपनी ननद के हाथों अपने प्राणनाथ को बुलवाया तो यूं कहने लगी,

0: बात तो सुनो
1: दो सुना
0: के आप मुझे इतना परेशान मत करो, जो आप कहते हुए है नहीं वो मैं अपने घर जाके अपने माँ बाप से कहकर सारी चीजें दिलवा दूंगी तुम्हें।
1: तो ये तो बहुत अच्छी बात है,
0: लेकिन आप मुझे इतना परेशान मत करो।
1: लेकिन विश्वास नहीं होता
0: अच्छा
1: कि सामान मिल जाएगा।

0: के 6 महीने के होने के बाद
1: माँ के दूध के साथ जरूरी है बच्चे के लिए पौष्टिक आहार।
0: केवल माँ का दूध
1: नहीं बना पाएगा बच्चे को मजबूत।
0: अतिरिक्त पोषण की जरूरत,
1: दूध के साथ ऊपरी आहार की अहमियत।
2: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। स्मार्ट के साथ मिलकर एक विशेष कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा रहे हैं जिसका शीर्षक है हिंसा को नो। इस संबंध में बहुत सारी बातें आती हैं, मसलन भ्रूण हत्या, बचपन का हनन, बाल उम्र में शारीरिक दर्द, कानूनी सलाह, भेदभाव, समान दर्जा, शिक्षा से वंचित, घर और पास पड़ोस के दायरे, बदलती शारीरिक संरचना, इंटरनेट का जाल, दहेज प्रथा, वैवाहिक बलात्कार, शारीरिक हिंसा, मानसिक बलात्कार। तो कहने का आशय यही है कि समाज में जितनी भी कुरूतियां हैं उन कुरूतियों को दूर करने का एक माध्यम महिला सशक्तिकरण पर आधारित ये विशेष कार्यक्रम जिसका नाम है हिंसा को नो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसमें अब हमें सहयोग मिला है रेडियो गुंजन 91.2 धर्मशाला का। हम उनका दिल से आभार व्यक्त करते हैं और ऐसे विशेष कार्यक्रम हमारे स्टेशन पर जो बनाए गए हैं दूसरे स्टेशन समय दर समय प्रसारित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं ये विशेष कार्यक्रम सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर।
5: नमस्कार श्रोताओं, और मैं हूं आपके साथ आपका अपना सचिन कपूर। रेडियो आपके लिए लेकर आया है एक विशेष कार्यक्रम जिसका नाम है हिंसा को नो। ये कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण पर आधारित है जो कि स्मार्ट संस्था नई दिल्ली के सहयोग से चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिला हिंसा के विभिन्न पहलुओं को उजागर करना तथा उन्हें सशक्त करना है ताकि वे इससे मुक्ति की दिशा में कदम बढ़ा सके। तो आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम

0: हाय अंजू।
1: हाय, कैसी हो शिल्पा?
0: मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे कॉल किया?
1: पहले ये बता कि तू पक्का ठीक है?
0: हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं
1: ओके। अच्छा, मैं सोच रही थी कि शॉपिंग करने चले, क्या बोलती है?
0: नहीं यार, मेरा मन नहीं है और घर पर बहुत सारा काम है। ऐसा कर तू, हुआ मैं अगले हफ्ते चलती हूँ।
1: चलना यार, कितना टाइम हो गया हमें साथ में बिताए हुए। मेरा बहुत मन है तुझसे मिलने का, और वैसे भी आज पानीपुरी खाते हैं, मेरा बहुत मन कर रहा है। चलना यार, चलते हैं। और मैं जानती हूँ तुझे पानीपुरी कितनी पसंद है।
0: हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन सच में अंजू, मुझे आज बहुत काम है घर पर, मैं नहीं आ पाऊंगी। आई एम सॉरी।
1: अरे यार, काम होता रहेगा, थोड़ा सा टाइम निकाल देना मेरे लिए। क्या मेरे लिए इतना नहीं कर सकती?
0: अरे यार, ऐसा नहीं है अंजू। अच्छा चल, ठीक है, मैं तुझे बगल वाले चौराहे पर मिलती हूँ।
1: चल ठीक।
0: हाँ, आती हूँ मैं।

0: आ गए आप? मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ, ये लीजिए पानी।
1: यहाँ रख दो। और पहले ये बताओ कि कितने पैसे खर्च करके आई हो आज?
0: जी वो अंजू ने जिद की थी तो ये एक साड़ी ले ली थी 2000 की।
1: पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं जो इतनी महंगी साड़ी लेकर आई हो? तुम्हारे बाप के पैसे नहीं है ये जो तुम इस तरह उड़ाती हो, जब जी में आया तब खर्च कर दिए, ऐसा नहीं चलेगा। ये फिजूल के खर्चे अब बंद करो, समझी हो?
0: इस लेकिन इसमें पापा कहाँ से आ गए इसमें?
1: ज्यादा जवान चला रही हो तेरी है? ज्यादा जवान चला रही है आजकल। दफा हो यहाँ से, ना काम की ना काज की, बस फिजूल का खर्चा करने आती है। हेलो
2: और भाई, कैसे हो?
1: अरे बढ़िया हूँ बढ़िया, तू कैसा है? क्या बात है, आज बड़े दिनों बाद कॉल किया। सब ठीक तो है ना? कैसे याद किया आज मुझे?
2: हाँ हाँ सब बढ़िया है, सोचा बड़े दिन हो गए तुमसे बात कर लूँ।
1: हाँ यार, दिल तो मेरा भी बड़ा था। मेरे घर में तो सब बढ़िया है, और तुम बताओ तुम्हारे घर पर सब ठीक ठाक है? सब खुशल मंगल है?
2: सब ठीक है, तुम बताओ।
1: अरे सब मस्त है रे।
2: अच्छा भाभी को देखा आज मैंने मॉल में, भाभी का क्या भाई आया हुआ है?
1: नहीं क्यों?
2: नहीं नहीं, वो ना भाभी के साथ कोई था तो मुझे ऐसा लगा कि
1: हाँ हाँ कोई दोस्त वोस्त होगा उसका। चलो ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ, मुझे कुछ काम याद आ गया।
2: हाँ हाँ ठीक है
1: ठीक है भाई, ठीक है ओके। शॉपिंग करने किसके साथ गई थी? कौन आशिक बुलाया था अपना? हा?
0: जी अंजू के साथ।
1: अंजू? हाँ हाँ अंजू, सब पता है मुझे तेरी हरकतें। सच सच बता किसके साथ गई थी, सच बता, नहीं तो मैं आज तेरी
0: मैं सच बोल रही हूँ मैं।
1: अरे झूठ बोलती है, अपने आशिक को बुलाती है और नाम तो अंजू का लेती है। मूर्ख समझती है।
0: नहीं मारो, मूर्ख समझती है, है? मैं सच बोल रही हूँ, मत मारिए प्लीज।
1: अरे क्यों मत मारियो, इसी के लायक है तू।
0: वो अंजू के पति थे, मैं सच बोल रही हूँ।
1: शिल्पा, अरे शिल्पा, अरे कहाँ मर गई है शिल्पा?

0: जी जी इंस्पेक्टर साहब, आप?
1: तुम्हारा नाम सौरभ है?
0: जी जी, लेकिन क्यों, क्या हुआ?
1: क्या हुआ?
0: हाँ, क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब?
1: चल, ये तो तुम्हें पुलिस स्टेशन में चल के पता चलेगा।
0: लेकिन मैंने किया क्या है, मुझे बताओ तो सही।
1: औरत पे हाथ उठाते है? चल अब पुलिस स्टेशन चल, तेरे को वहाँ जाके बताता हूँ मैं।
0: इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, माफ कर दो इंस्पेक्टर साहब, मुझे माफ कर दो। शिल्पा, तुम ही बोलो ना इनको, मुझे माफ कर दो। शिल्पा, शिल्पा बोलो ना।
2: बस अब आपको जो भी पता लगेगा पुलिस स्टेशन पता लगेगा।

0: अभी आप सुन रहे थे महिला सशक्तिकरण पर आधारित हिंसा को नो कार्यक्रम। इसमें हमें सहयोग मिला रेडियो गुंजन 91.2 धर्मशाला का। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा स्मार्ट के सौजन्य से विशेष कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं और हमारे रेडियो स्टेशन द्वारा जो बनाए गए विशेष कार्यक्रम दूसरे स्टेशन भी समय दर समय प्रसारित कर रहे हैं। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा 01204060205 पर आप हमें कॉल करके बताएगा जरूर। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। नमस्कार।
1: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: मैंने वादा किया था बहू से, मैंने वादा किया था, मुझे पूरा करना ही होगा।
2: लो माँ भी आ गई। माँ देखो, तुम्हारा पोता बिल्कुल मुझ पे गया है ना।
1: ये सब बाद में, पहले बच्चा इधर ला। ये ले बहू, लगा अपने सीने से और पिला दूध। देख किया ना मैंने वादा पूरा, पहले घंटे की सुरक्षा का।
3: हाँ माँ जी।
4: जन्म के पहले घंटे में बच्चे को मिले माँ के दूध और तन की गर्मी की सुरक्षा। देर की तो बच्चे की जान को हो सकता है लगभग डेढ़ गुना ज्यादा खतरा। याद रहे वादा पहले घंटे की सुरक्षा का।
5: स्तनपान विकल्प नहीं, संकल्प है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी ही अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।
6: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम अपने बच्चों की निगरानी कर सकते हैं, किस तरीके से बच्चों को हम संस्कार दे सकते हैं और किस तरीके से वो अगर गलत दिशा में जा रहे हैं तो हम उनको कैसे रोक सकें। जी हाँ, कुछ ऐसी बातें कहीं ना कहीं सुनने को समझने को मिल जाती है, लेकिन कुछ चुनिंदा बातों को अगर हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपका बच्चा आगे चलकर आपका नाम रोशन करेगा, देश का भविष्य वो तय करेगा। जी हाँ, बात करते हैं आपका बेटा या बेटी को अगर कुछ ऐसे सबक सिखाएंगे तो निश्चित तौर पर आपका बच्चा एक संस्कारी बेटा या बेटी बनकर आगे बढ़ता रहेगा। जरूरी है कि उनकी गलतियों पर हमें पर्दा नहीं डालना है, जरूरी है कि उनकी गलतियों को सुधार में लाकर आगे बढ़ते हुए चले जाना है। बात करते हैं कुछ ऐसे ही विषय के विषय में। बच्चे बड़े होकर क्या बनेंगे इसका पता किसी को नहीं, लेकिन वो अच्छे इंसान बनेंगे या नहीं ये आप पर निर्भर करता है। आप सोच रहे होंगे कि कैसे, चलिए हम आपको बता दें। दरअसल आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होंगे। बच्चे भी वही आम की ही तरह होते हैं जिसको आपको बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। अगर आप अपने बच्चों को अच्छी आदतें नहीं सिखाएंगे तो आपके लिए बच्चों के बेहतर भविष्य को तय करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि शुरू से ही बच्चों को अच्छी आदतें सिखाई जाएं। हालांकि मौजूदा वक्त में हम बच्चों की गलतियों को नजरअंदाज कर उन पर हंसते हैं जो उन्हें आगे चलकर बिगाड़ने का काम करती हैं। आइए आपको बताते हैं कि बच्चों को सिखाई जाने वाली 5 ऐसी अच्छी आदतों के बारे में जो उन्हें अच्छा इंसान बनने में मदद करेंगी। बात करते हैं सबसे पहले ईमानदारी के विषय में। ईमानदारी एक ऐसा विषय है कि अगर आपके पास ये है तो निश्चित तौर पर आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता और इसकी जो खुशबू है वो चारों दिशाओं में फैलती है। जी हाँ, बच्चों को शुरू से ही ईमानदारी के रास्ते पर चलना सिखाना होगा और इससे आपको 2 फायदे होंगे। पहला तो ये कि बच्चा सच बोलने में कभी आपसे कतराएगा नहीं और दूसरा उसे अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। ईमानदारी बच्चों में मासूमियत बरकरार रखने का काम करती है। आप बच्चों को झूठ बोलने के परिणामों के बारे में बताएं और उन्हें गलती स्वीकार करना सिखाएं। अच्छा स्वभाव यानी कि गुड मैनर्स टू टीच टू किड्स। माता पिता को अपने बच्चों को जल्द से जल्द अच्छा स्वभाव अपनाना सिखाना चाहिए। अच्छा स्वभाव आपके बच्चे का सोशल IQ तो बढ़ाता ही है, साथ ही उसे बेहतर तरीके से निखार कर सामने आने में भी मदद करता है। अच्छा स्वभाव उसे उसके जीवन में अच्छा इंसान बनने में भी मदद करता है। बात करते हैं हेल्दी फूड्स के विषय में। हेल्दी फूड्स का चुनाव करना ये भी एक बड़ा सब्जेक्ट है, यानी हेल्दी फूड सिलेक्शन टू टीच टू किड्स। माता पिता को अपने बच्चों को हमेशा हेल्दी फूड्स का विकल्प चुनना सिखाना चाहिए। जब बच्चों को हेल्दी फूड्स के बारे में पता होगा तो अपने जीवन में हेल्दी रहना वो सीख पाएंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल भी फॉलो करेंगे। हेल्दी फूड्स बच्चों के स्वास्थ्य को हेल्दी रखने की एक गारंटी है जिसे हर माता पिता को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। बात करते हैं सम्मान की। सम्मान हर कोई चाहता है, लेकिन अगर आप किसी को सम्मान देते हैं तो निश्चित तौर पर ये आपके सम्मान की बात है, यानी कि रेस्पेक्ट टू टीच टू किड्स। छोटे बड़ों का सम्मान करना हर किसी को आना चाहिए। ये एक ऐसा भाव है जो हर बच्चे में होना चाहिए, फिर चाहे वो बड़े हों या छोटे, सभी का आदर बहुत जरूरी है। एक अच्छा इंसान बनने के लिए बच्चों को शुरू से ही आदर सम्मान करने का भाव सिखाना बहुत जरूरी है। बात करते हैं टाइम की, यानी कि टाइम मैनेजमेंट की। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में बच्चों को समय का प्रबंधन सिखाना बहुत जरूरी है। बच्चों को ये पता होना चाहिए कि उन्हें अपना समय कब कहां खर्च करना है, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता और उस समय को बर्बाद करना आपके लिए और भी ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसलिए बच्चों को समय का प्रबंधन सिखाना बहुत जरूरी है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।
2: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें, तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: लक्षण, इसी से तो किसी की पहचान बनती है, और बड़े बुजुर्गों ने कहा भी है कि किसी के दो चार लक्षण जान लो फिर वो इंसान कैसा है मालूम पड़ जाता है। और यही लक्षण पहचान कर हमने न जाने कितनी लड़ाइयां जीती भी हैं। फिर एक खांसी के लक्षण को हम कैसे नकार कर उसे टीबी में बदलने का मौका दे देते हैं, बताइए। देखिए, सिर्फ 5 बातें ही तो याद रखनी है आपको। 2 हफ्ते से लगातार खांसी, बुखार, रात में पसीना आना, भूख न लगना, वजन में लगातार गिरावट, इनका पता चलते ही टीबी की जांच कराइए। और सुनिए, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में ये जांच बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: ये संदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कु ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
1: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।
4: क्या आपको पता है गर्भवती महिला को प्रसव के लिए समय से अस्पताल ले जाने के लिए सरकारी एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है
5: और वो भी बिल्कुल निशुल्क। गर्भवती को प्रसव के लिए अस्पताल ले जाने के लिए 102 नंबर पर फोन करके आप एम्बुलेंस सेवा प्राप्त कर सकते हैं।
4: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आशा या नर्स दीदी को संपर्क करें।
5: शिशु की सही देखभाल से
4: फर्क पड़ता है। यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
6: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
7: The world is here.

नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसा विषय है, डिप्रेशन, अवसाद, तनाव। इससे हम कैसे अपने आप को बचा कर रखें? जी हाँ, इससे अगर आप अपने आप को बचा कर रख पाएंगे तो निश्चित तौर पर आप खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। चलिए बात करते हैं कि डिप्रेशन से कैसे बचे। तो बात सामने आती है कि डिप्रेशन से उबरने के लिए व्यक्ति को अपनी दिनचर्या में व्यायाम, योग और ध्यान को अवश्य जगह देनी चाहिए। ये डिप्रेशन के रोगी के मस्तिष्क को शांत करता है, साथ ही उनमें हार्मोनल असंतुलन को ठीक करता है। व्यक्ति को सुबह उठकर सैर पर जाना चाहिए, उसके बाद योगासन और प्राणायाम करना चाहिए। रोगी को ध्यान या मेडिटेशन करना चाहिए। विटामिन B12 सेरोटोनिन बनाता है जो हमारे मूड को सही और खुश रखता है, लेकिन अगर विटामिन B12 की कमी होगी तो इससे मूड स्विंग की दिक्कत हो सकती है। अगर लंबे समय तक ये दिक्कत बनी रहेगी तो इससे पीड़ित व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है। इसलिए शरीर में विटामिन B12 की डोज लेनी चाहिए। होम्योपैथी में कुछ बेहतरीन दवाएं हैं जो डिप्रेशन से आपको उबार सकती हैं। तो इसलिए अपना ख्याल रखें, डिप्रेशन से अपने आप को बचा कर रखें। अब इसी में आगे हम बात करते हैं, बोटुलिज्म क्या है। तो इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि बोटुलिज्म हमारे शरीर में क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिज्म बैक्टीरिया का संक्रमण है जो हमारे शरीर में जहरीली स्थिति पैदा कर देती है। बोटुलिज्म घातक हो सकता है और इसमें आपातकालीन चिकित्सीय देखभाल की आवश्यकता पड़ सकती है। ये शिशुओं में भी हो सकता है, ये भोजन में फैल सकता है, साथ ही एक घाव को संक्रमित कर सकता है। बोटुलिज्म विषाणु अक्सर फलों और सब्जियों की सतहों और समुद्री भोजन में पाए जाते हैं। कम ऑक्सीजन की स्थिति में आमतौर पर ये तब बनता है जब भोजन को घर पर अनुचित तरीके से संसाधित अर्थात डिब्बा बंद किया जाता है या भोजन को फ्रिज में अधिक दिनों तक रखा जाता है। बोटुलिज्म एक दुर्लभ लेकिन गंभीर बीमारी है जो विष के कारण होती है, शरीर की नसों पर हमला करती है। इससे सांस लेने में कठिनाई, मांसपेशी पक्षाघात और यहां तक कि मृत्यु भी हो सकती है। कोशिश करें कि ताजा और ठीक से पका हुआ भोजन ही करें। पके हुए भोजन को फ्रिज में जमा कर खाने की लत अच्छी नहीं है, यथा संभव बचना चाहिए। अब हम बात करने जा रहे हैं, सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड आपको कैंसर का मरीज बना रहा है, मरीज बना सकता है। तो विशेषज्ञ कहते हैं कि प्रोसेस्ड फूड का सीधा मतलब है कि पैकेट वाला खाना। जब किसी नेचुरल खाने को एक प्रक्रिया के जरिए रिफाइन करके उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव को जोड़कर उसकी पैकेजिंग की जाती है तो उसे प्रोसेस्ड फूड कहा जाता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आजकल प्रोसेस्ड फूड लोगों की पसंदीदा फूड बन चुकी है, जैसे कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, चिकन नगेट्स, फ्राइज वगैरह वगैरह। भले ही ये चीज खाने में आपको काफी स्वादिष्ट लगती हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लंबे वक्त तक इनका सेवन करने से अपने शरीर को काफी नुकसान हो सकता है। फूड के प्रोसेसिंग के दौरान इसकी सारी विटामिन हीट के चलते खत्म हो जाती है। इसमें कैलोरी की मात्रा भी काफी ज्यादा होती है। प्रोसेस्ड फूड में अक्सर अतिरिक्त चीनी, सोडियम और वसा का अस्वास्थ्यकर स्तर शामिल होता है। ये तत्व हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन का स्वाद बेहतर बनाते हैं, लेकिन इनकी अधिकता से मोटापा, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती हैं। इसलिए प्रोसेस्ड और डिब्बा बंद भोजन से बचें, तभी स्वास्थ्य बचा पाएंगे। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सबको विमलेश का नमस्कार। आज के कार्यक्रम में स्वागत है आप सबका।
3: अजीत का भी नमस्कार। और आइए सुनते हैं श्रोताओं आज का सुविचार जो हमें भेजा है डॉक्टर W अंसारी और डॉक्टर बेबी अंसारी जी ने इंदिरा विहार दिल्ली से।
2: और वो लिखते हैं, देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान सर्वश्रेष्ठ है।
3: और आइए सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
2: मेन रोड तिलहारा महाराष्ट्र से प्रकाश पोहरकर, नर्मदा पोहरकर, कुमारी सुजाता पोहरकर, वो लिखते हैं,
3: मुझे भी गर्व है उन्होंने ये कार्यक्रम सुना और आपने लिखा कि राहुल के पापा साफ सफाई का काम करते थे, इसलिए स्कूल के बच्चे राहुल को बुरा भला कहते थे, लेकिन राहुल के पापा तो दूसरों के आरोग्य का महान काम करते थे। यह कहानी रूपी संदेश सुनवाने के लिए विमलेश जी और अजीत जी को दिल से धन्यवाद।
2: जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
3: अयोध्या धाम से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राज बाबू शर्मा, सौरभ शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सोनल शर्मा, सोनाली शर्मा, सिमरन शर्मा और साक्षी शर्मा।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश प्राप्त हुआ है ग्राम खेगांव तहसील महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा, वेदिका वंश, निकेश, धर्मेंद्र, मेघा, नंदिनी और ममताबाई वर्मा।
3: तो विमलेश जी, ये भी जानिए श्रृंखला में आज हम किसकी चर्चा करेंगे।
2: आज हम चर्चा करेंगे पंचतंत्र की कहानियों के लेखक पंडित विष्णु शर्मा के बारे में
3: जी।
2: और ये भी जानेंगे कि पंचतंत्र की कहानियां किन परिस्थितियों में लिखी गई थीं।
3: पंचतंत्र की कहानियों के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन उसके लेखक के बारे में श्रोताओं बहुत कम लोगों को पता है। आपको पता होगा कि पंचतंत्र विश्व साहित्य को भारतीय साहित्य की सबसे महत्वपूर्ण देन है
2: जी।
3: पंचतंत्र की लोकप्रियता इस बात से आंकी जा सकती है कि विश्व की अधिकांश भाषाओं में इनका अनुवाद हो चुका है।
2: श्रोताओ, पंडित विष्णु शर्मा संस्कृत के प्रसिद्ध लेखक थे। उन्हें प्रसिद्ध संस्कृत नीति पुस्तक पंचतंत्र का रचनाकार माना जाता है। पंचतंत्र की कहानियों ने उन्हें अमर बना दिया। माना जाता है कि जब इस पंचतंत्र ग्रंथ की रचना पूरी हुई तब आचार्य विष्णु शर्मा की उम्र 80 वर्ष के करीब थी।
3: पंचतंत्र की रचना ईसा पूर्व दूसरी और तीसरी शताब्दी के बीच में हुई। लेकिन विमलेश जी, हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे कि पंचतंत्र की कहानियां लिखी क्यों गईं और किन परिस्थितियों में लिखी गईं।
2: जी अजीत जी, जरूर। इसके पीछे बड़ी दिलचस्प कहानी है। पंडित विष्णु शर्मा जी दक्षिण भारत के महिला रौप्य नामक नगर में रहते थे।
3: महिला रौप्य?
2: जी, महिला रौप्य। ये प्राचीन दक्षिण भारत का एक नगर था। महिला रौप्य के राजा थे अमर शक्ति। उनके 3 पुत्र थे। राजा चाहते थे कि उनके पुत्र राजनीति और नेतृत्व का गुण सीखें, लेकिन वो असफल रहे। राजा ने उन्हें सिखाने के लिए बहुत से पंडित और आचार्य रखे, पर कोई भी उन्हें सिखा ना सका। तो अजीत जी, अब आप बताएं फिर क्या हुआ होगा।
3: फिर राजा ने घोषणा की कि जो विद्वान उन्हें शिक्षा दे पाएगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। फिर राजा ने अपने मंत्रियों से सलाह ली
2: जी।
3: मंत्रियों ने कहा कि वे आचार्य विष्णु शर्मा को उनका प्रशिक्षक नियुक्त करें। विष्णु शर्मा राजनीति तथा नीति शास्त्र सहित सभी शास्त्रों के ज्ञाता थे।
2: राजा तैयार हो गए तथा विष्णु शर्मा को दरबार में बुलाकर घोषणा की कि यदि वे उसके पुत्रों को कुशल राजसी प्रशासक बनाने में सफल होते हैं तो वो उन्हें 100 गांव तथा बहुत सारा स्वर्ण भेंट स्वरूप देंगे।
3: तो श्रोताओं, फिर ऐसा हुआ कि आचार्य विष्णु शर्मा हंसे और कहा, राजन, मैं अपनी विद्या को नहीं बेचता। मुझे किसी उपहार की इच्छा या लालच नहीं है
2: जी।
3: आपने मुझे विशेष सम्मान सहित बुलाया है, इसलिए मैं आपके पुत्रों को 6 महीने के भीतर कुशल प्रशासक बनाने की शपथ लेता हूँ। अगर मैं अपना संकल्प पूरा करने में असफल रहा तो राजन, मैं अपना नाम बदल दूंगा।
2: फिर क्या था, राजा ने प्रसन्नता से 3 राजकुमारों की जिम्मेदारी विष्णु शर्मा को दे दी। विष्णु शर्मा जानते थे कि वे उन राजपुत्रों को पुराने तरीकों से कभी पढ़ा ही नहीं सकते, क्योंकि वे बहुत ही नीरस हैं। उन्हें थोड़ा सरल तरीका अपनाना होगा, और वो तरीका था उन्हें रोचक कहानियां सुनाकर आवश्यक ज्ञान सिखाने का।
3: तो इसीलिए उन्होंने उन्हें शिक्षित करने के लिए जीव जंतुओं और पशु पक्षियों पर आधारित कहानियों की रचना की, और इनके माध्यम से वे उन्हें नीति सिखाया करते थे
2: जी।
3: श्रोताओं, शीघ्र ही राजकुमारों ने इसमें रुचि लेना आरंभ कर दिया तथा नीति सीखने में सफलता प्राप्त की
2: जी।
3: और इस प्रकार इन कहानियों का संकलन 5 समूहों में पंचतंत्र के नाम से लगभग 2000 साल पहले बना
2: जी। तो श्रोताओं, कैसी लगी ये जानकारी? हमारा प्रयास रहता है कि आमतौर पर जिन रोचक तथ्यों को लोग नहीं जानते उन्हें हम उमंग प्रसारण में उपलब्ध कराएं। तो अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से।
3: तो आज का प्रश्न है श्रोताओं, तो आज का प्रश्न है, पंडित विष्णु शर्मा किस नगर के रहने वाले थे? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: पंडित विष्णु शर्मा किस नगर के रहने वाले थे?
3: 8800440559 हमारा IVRS नंबर है, जिस पर आप अपना उत्तर हमें तत्काल भेज सकते हैं।
2: और हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in, जिस पर आप अपना संदेश भेज सकते हैं।
3: तो आइए अब सुनते हैं आज के कार्यक्रम।
2: तो श्रोताओं, कार्यक्रमों की कड़ी में आज का पहला कार्यक्रम अन्याय।
3: तो आइए सुनते हैं और पता लगाते हैं किसने किसके साथ किया अन्याय, और ये भी कि
2: जिसके साथ हुआ अन्याय क्या उसे न्याय मिला।
4: बात 1922 की है। उन दिनों अंग्रेजों का शासन था, भारत देश अंग्रेजों का गुलाम था। अपने लोगों को तरह तरह के अत्याचार सहने पड़ते थे। अंग्रेज शासन ने अपने स्वार्थ पूरे करने के लिए भारत के लोगों को बहुत डरा धमका कर रखा था, पर उनकी धमकियों के खिलाफ लड़ने की हिम्मत रखने वाले भी लोग थे। ऐसे ही लोग थे आंध्र प्रदेश के कोया आदिवासी, और उनके नेता का नाम था श्री राम राजू। आंध्र के घने जंगलों के बीच रहने वाले कोया आदिवासी सीधी सादी खेती के माध्यम से अपनी रोजी रोटी जुटाया करते थे।
5: फसल अच्छी हो तो अच्छा है।
4: पर जब से अंग्रेजों ने उनके बीच आकर अपना हक जमाया, उनका जीवन मुश्किल हो गया।
6: इधर लाओ।
4: अंग्रेजों की योजना थी कि घने जंगलों और पहाड़ों को चीरती हुई एक सड़क बिछाई जाए, पर सड़क के निर्माण कार्य के लिए मजदूर कहाँ से आएंगे?
5: अच्छा रुको, मैं उठाती हूँ। लाओ ये लो, लाओ ये बुझा मुझे।
4: ये सवाल जब तहसीलदार महोदय के सामने आया तो उनकी निगाह कोया आदिवासियों पर पड़ी।
5: जाती हूँ।
4: तहसीलदार का नाम था बेस्टियन। बेस्टियन को शासन द्वारा सड़क बनवाने का काम सौंपा गया था। बेस्टियन स्वभाव से बहुत अक्खड़ और क्रूर था। वो आदिवासियों के गांवों में गया और बड़े घमंड के साथ खूब चिल्ला चिल्ला कर बोला,
7: 2 दिन में जंगल में सड़क बनाने का काम शुरू होगा। तुम सब लोगों को इस काम पर पहुंचना है।
8: जी जी जी, जी सरकार।
7: अगर नहीं पहुंचे तो ठीक नहीं होगा। अंग्रेज सरकार का हुक्म है, ये जान लो।
4: आदिवासी लोग चुप हो गए। वे उन घने जंगलों के बीच अकेले पड़े थे। वे कुछ पूछें तो किससे, कुछ करें तो क्या? किसी ने हिम्मत करके तहसीलदार से पूछना चाहा कि
8: सरकार, काम करेंगे तो बदले में क्या मिलेगा?
4: तो बेस्टियन का चेहरा तमतमा गया।
7: क्या मिलेगा? हुक्म बजाना नौकर का काम है, आगे से ये सवाल मत पूछना।
4: आदिवासी सहम गए, काम पर जाने लगे, पर उनका मन नहीं मानता था। वे अपमान से अंदर ही अंदर घुट रहे थे और गुस्से से सुलग रहे थे। उन्हीं दिनों एक साधु जंगलों में आकर रहने लगा था। उस साधु का नाम था अल्लूरी श्री राम राजू। श्री राम राजू ने हाई स्कूल तक पढ़ाई की थी। उसके बाद अगली पढ़ाई छोड़कर वो 18 वर्ष की उम्र में ही साधु बन गया। जब वो उन जंगलों में रहने आया तो आदिवासी लोगों से अच्छी तरह हिल मिल गया। लोग उसे अपने दुख दर्द की कहानी सुनाते।
8: मुश्किल हो गई है, जीना मुश्किल हो गया हमारा।
5: मालिक,
8: कुछ तो मदद कीजिए। आप हमें बचा सकते हैं।
5: अंग्रेज हम पर बहुत अत्याचार करते हैं मालिक।
4: और पूछते कि कैसे अपने कष्टों से छुटकारा पाएं। श्री राम राजू ने आदि

0: फिर क्या था? विद्रोह की ऐसी आग भड़की कि अंग्रेजों के होश उड़ गए।
1: चलो आगे बढ़ो,
2: एक साथ आवाज उठाएंगे, चलो चलो।
0: भोले भाले आदिवासियों के मन में भरा सारा अपमान, दुख और क्रोध फूट के निकल पड़ा। भद्राचलम से पर्वतीपुरम तक पूरे इलाके के आदिवासी लोग अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए कूद पड़े।
2: अब हम अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे।
0: अंग्रेज सरकार के ऐसे छक्के छूटे कि आसपास के राज्यों से सेना बुलानी पड़ी, पर अंग्रेजों की इतनी भारी सेना भी 2 साल तक विद्रोह को दबा ना पाई। जब संकरी पगडंडियों से सेना की टुकड़ी गुजर रही होती तो जंगलों में छिपे आदिवासी भारतीय सिपाहियों को गुजर जाने देते, और जैसे ही अंग्रेज सार्जेंट या कमांडर नजर आते तो उन पर अचूक निशाना लगाते। आदिवासियों के विद्रोह से अंग्रेज सरकार इतना डरने लगी थी कि राजू के दल को आते देखकर थानों से पुलिस भाग जाती थी। श्रीराम राजू ने आदिवासियों से कह रखा था कि
3: देखो अंग्रेजों से लड़ो, लेकिन एक भी भारतीय सैनिक का बाल भी बांका ना होने पाए।
0: अंग्रेजों की सेना में बहुत से भारतीय सिपाही भी थे। राजू के आदेश का सख्ती से पालन हुआ। जब वो पहाड़ों से कूच करते थे तो लगता था मानो उन्हें किसी का भय ना हो। आदिवासी लोग पुलिस चौकियों या सेना पर हमला कर देते थे और उनके अस्त्र शस्त्र लूट कर भाग जाते थे। राजू ने एक कोने से दूसरे कोने तक गुप्त संदेश पहुंचाने के लिए गुप्तचरों का जाल फैला रखा था।
3: सुनो, कोई खबर मिली?
4: जी, गांव से बाहर जाने वाली सड़क पर अंग्रेजों की एक टुकड़ी दिखाई दी है।
0: अंग्रेजी सेना के आने जाने के संदेश ऐसे पहुंचाए जाते कि किसी को कानो कान खबर ना हो। ये सब देखकर अंग्रेजों ने भी अपने दांतों तले उंगली दबा ली। जंगलों और पहाड़ों में राजू के लोग बड़ी फुर्ती से छिपते फिरते। ऐसे इलाके में हथियारों से लदी अंग्रेजों की भारी भरकम सेना अपने आप को कमजोर महसूस करने लगती थी। राजू के लोगों को गांव गांव का सहारा था।
5: अरे खाना मिल जाएगा बाबा, धीरे चलो, झाड़ी बचा के।
0: गांव के लोग विद्रोहियों को शरण देते और लाख कोशिश करने पर अंग्रेज उनकी खबर नहीं लगा पाते। फिर अंग्रेजों को एक तरकीब सूझी। उन्होंने सोचा कि
4: सर, मेरा एक सुझाव है, आदिवासियों को लड़ाई में तो हरा नहीं पाएंगे, अब इन्हें भूखे रखकर मारना होगा।
6: ये अच्छा रहेगा।
0: अंदर जंगल के गांवों में राशन लाने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए गए।
7: इतने दिनों से चूल्हा नहीं जला है,
8: हाँ? मुझे भूख लगी है।
9: पेट में घुटने दिए हुए
8: हैं। खाना खा रहे हैं।
7: कब तक बच्चों को पानी उबाल उबाल के पिलाएंगे ऐसे?
0: किसी को भी सामान का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना मुश्किल हो गया। लोगों की बंदूकों के कारतूस खत्म हो गए। इसके कारण अंग्रेजों के सिपाही गांवों में घुसकर लोगों को मारने पीटने लगे। यहां तक कि उगी हुई फसल को भी जलाया जाने लगा।
10: जला दो इन सब की फसलों को।
11: नहीं मालिक, नहीं।
10: जला दो ये सब।

0: आदिवासियों की हिम्मत जवाब देने लगी। आखिर कब तक ये तकलीफ बर्दाश्त की जा सकती थी। राजू के कुछ साथी पुलिस की पकड़ में आ गए थे। एक बार राजू भी पुलिस की गिरफ्त में आकर बुरी तरह जख्मी हो गया था। लोग परेशान होकर राजू के पास पहुंचते। राजू भी परेशान था, उससे उनका दुख देखा नहीं गया। राजू ने सोचा कि
1: अगर मैं अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दूं, तो अंग्रेज इन हजारों लोगों को रोज सताना बंद कर देंगे। 2 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद लोगों में कठिनाइयों का सामना करने की तैयारी नहीं रह पाई है, और अंग्रेज सरकार तो उन्हें भूखा मारकर ही छोड़ेगी।
0: ये सोचकर श्रीराम राजू अपने आप को अंग्रेजों के हवाले सौंपने चला। सेना के मेजर गुडोल मंपा गांव में डेरा डाले हुए थे। राजू को गिरफ्तार करके उसके सामने पेश किया गया। गिरफ्तारी की खबर सुनकर आसपास के गांवों के लोग बड़ी संख्या में वहां इकट्ठे होने लगे। मेजर गुडोल मनी मन बहुत अधिक खुश हो रहा था। उसे कहां उम्मीद थी कि उनका शिकार खुद जाल में फंसने चला आएगा। राजू मांग कर रहा था कि
1: मुझे कचहरी में पेश किया जाए और कानून के हिसाब से मेरे साथ बर्ताव हो।
0: पर गुडोल का कोई इरादा नहीं था कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में राजू को अपनी जान बचाने का जरा भी मौका मिले। बस उसके इशारे पर एक सिपाही ने राजू पर गोली चलाई और उसका काम तमाम कर दिया गया। इस तरह अल्लूरी श्रीराम राजू अपने लोगों की खातिर शहीद हुआ।

0: इसके बाद कोया आदिवासियों का आंदोलन टूट गया, पर अंग्रेज सरकार ने अच्छा खासा पाठ पढ़ लिया था। वे समझ गए थे कि आदिवासियों के साथ मनमर्जी नहीं की जा सकती। तब से आदिवासियों के हितों की रक्षा करने के लिए विशेष कोशिश करने का फैसला हुआ। अपने देश के इतिहास में कोया आदिवासियों ने अन्याय के खिलाफ लड़ने की मिसाल स्थापित की।
1: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम अन्याय। आशा है कि आपको जरूर यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। और आइए अब सुनते हैं एक विज्ञान गीत। कार्यक्रम है खट्टा तो क्यों।
2: ये एक विज्ञान गीत है जो हमें जानकारी देगा कि कुछ फल खट्टे होते हैं तो वो क्यों, क्या पाया जाता है उनमें।
3: साथियों, आपको खाने का कौन सा स्वाद सबसे अधिक पसंद है? मीठा, कड़वा या खट्टा? खट्टे के तो नाम से ही मुंह में पानी आने लगा, सही कहा ना? क्या आप जानते हैं खाने की चीजों का स्वाद खट्टा क्यों होता है? आइए इस गीत के माध्यम से जानें कि खट्टे स्वाद वाली चीजों में कौन सा पदार्थ होता है जो उन्हें खट्टा स्वाद देता है।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खट्टा तो क्यों। श्रोताओ और आइए अब सुनते हैं अंग्रेजी की एक हास्य प्रधान कहानी जो एक ईरानी लोक कथा है।
1: शीर्षक है द टॉकेटिव बार्बर।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: परिवार नियोजन के बारे में फिल्म अभिनेता सचिन क्या कहते हैं जरा सुने।
2: परिवार उतना ही हो जिसको आप सही शिक्षा दे सके, बेहतर जीवन दे सके और स्वस्थ रख सके। परिवार छोटा होगा, बच्चों के जन्म में अंतर होगा तो माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहेंगे। आज तो अनेक उपाय भी है, कॉन्डोम है, कॉपर टी है, गोली है। डॉक्टर या स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सलाह से ही कोई भी एक उपाय चुन लीजिए। स्वस्थ भारत की शुरुआत होती है स्वस्थ परिवार से, आपसे।
1: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करते हैं कि डाइजेशन बढ़ाने के लिए अगर आप चाय पी रहे हैं तो हम सजेस्ट करेंगे कि 4 हर्बल चाय पीजिए। वो कौन कौन सी है इसके विषय में बात करेंगे, लेकिन अगर आपका पेट फूला हुआ है तो वो कम हो जाएगा, या यूं कहें कि पिचक जाएगा, या यूं कहें कि वेट लॉस होगा। जानते हैं कि गर्मियों में किन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनी चाय पीने से आपको ब्लोटिंग की समस्या से आराम मिल सकता है। ये एक समस्या है। अब बात करते हैं इसी विषय में। पेट फूलने पर आराम के लिए आप पीजिए हर्बल टी। पेट फूलने की समस्या गर्मियों में बढ़ सकती है और मौसम बदलने के साथ ही लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं और इसकी वजह से पेट में गैस बनने लगती है और पेट फूलने लगता है। गर्मियों में बार बार ठंडा पानी पीने, हैवी मील खाने, ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने से डाइजेशन स्लो हो जाता है। इसी वजह से लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। पेट फूलने की समस्या से आराम पाने के लिए हर्बल टी आप पी सकते हैं। आइए जानते हैं कि गर्मियों में किन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनी चाय पीने से आपको ब्लोटिंग की समस्या से आराम मिल सकता है। तो बात सामने आती है कैमोमाइल टी के विषय में बात करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर कैमोमाइल के फूलों से तैयार होने वाली हर्बल टी इन्फ्लेमेशन कम करती है और स्ट्रेस से भी राहत दिलाती है। कैमोमाइल टी पीने से पेट की गैस कम होती है। इसी तरह पीरियड्स के दौरान होने वाले मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स की समस्या और जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए भी कैमोमाइल की चाय लाभकारी मानी जाती है। सौंफ की चाय। गर्मियों में सौंफ का शरबत पीने से शरीर को ठंडक मिलती है। ये शरीर के तापमान को संतुलित रखता है। इसी तरह सौंफ के दानों को उबालकर बनाई जाने वाली चाय भी गर्मियों में डाइजेशन बूस्ट करने का काम करती है। ये चाय पीने से पेट में भारीपन, गैस और ब्लोटिंग की समस्या कम होती है। अब बात करते हैं अजवाइन की चाय के विषय में। ये देसी मसाला गैस और अपच जैसी समस्याओं से आराम दिलाने का खास नुस्खा है। अजवाइन के बीजों को फाकने से अर्थात लेने से कॉन्स्टिपेशन की समस्या कम होती है और ये खाने का फ्लेवर भी बढ़ाता है। अजवाइन के बीजों को रात भर पानी में भिगोकर रखें और अगले दिन इस पानी को अच्छी तरह से उबालें, थोड़ा सा काला नमक मिलाएं और इस चाय को छानकर पिएं। इस तरह आप स्वादानुसार शहद भी इस चाय में मिला सकते हैं। अदरक और शहद की चाय। जी हाँ, पेट की समस्याओं से आराम पाने के लिए अदरक यानी कि जिंजर का इस्तेमाल बहुत असरदार माना जाता है। ये पेट की समस्याओं को कम करने के लिए अदरक के साथ नींबू, शहद और हल्दी जैसी चीजों को मिलाकर हर्बल टी बनाई जाती है। अदरक की चाय पीने से डाइजेशन बेहतर बनता है और इससे पेट की गैस और ब्लोटिंग की समस्या कम होती है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda. Suno Sharda.
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सेहत सही लाभ कही और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। जैसा कि आप जानते हैं सुनो शारदा 90.8 FM और स्मार्ट मिलकर के एक स्वास्थ्य जन जागरूकता मुहिम चला रहे हैं जिसका नाम है सेहत सही लाभ कही, ताकि हमारे जो समुदाय के लोग हैं वो सब जागरूक रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपने देश की तरक्की में अपना योगदान दें। और आप सभी जानते हैं इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है और ऐसे में बीमारियां भी होती हैं, तो कौन कौन सी चीज़ें हमें खाने चाहिए, कैसे बचना चाहिए, क्या बीमारियां हो सकती हैं, तो इन सब बातों की जानकारी के लिए आज हमारे साथ में हैं डॉक्टर आर के शर्मा जी, उनसे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका कार्यक्रम में स्वागत है।
2: धन्यवाद
1: डॉक्टर साहब। गर्मी का मौसम है, गर्मी पड़ रही है, चिलचिलाती धूप है, तो किस तरह से लोग अपना इस मौसम में ध्यान रखें?
2: इस मौसम में सबसे पहले ये है कि धूप में काम कम से कम करें, सुबह शाम ज़्यादा करें, धूप में सिर पर कपड़ा रख कर चलें, पानी बोतल या साथ में इलेक्ट्रॉल ORS या जो भी चीज़ अवेलेबिलिटी हो, या घर से अपने एक छाछ बेलपत्थर का जूस या जो भी जूस लेकर चल सकते हैं वो लेकर चलें साथ में, ताकि बीच में कहीं उसे पी सकें।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, गर्मी हो या मौसम खराब हो, जो काम करने वाले हैं उनको तो अपना काम करना ही है, जाना ही है।
2: काम बहुत जरूरी है, काम बिना तो कुछ नहीं है।
1: तो काम पर जो लोग जाते हैं, खास करके जो शारीरिक परिश्रम करते हैं, तो उनको कैसे अपना ध्यान रखना चाहिए?
2: उनको यही सिर पर कपड़ा रखें हर समय
1: जी।
2: दूसरा ये कि कम से कम जो है, मतलब ऐसे ही समझ लीजिए, देखें बहुत ज्यादा चिलचिलाती धूप है, 2 घंटे का टाइम होता है 1 बजे से लेकर 3 बजे तक, उस समय थोड़ा सा जो है कम काम करें या रेस्ट।
1: और
2: सुबह बहुत जल्दी से काम कर सकते हैं, शाम को भी देर तक काम कर सकते हैं, उस समय थोड़ा ठंड रहती है, पैरी में जो है सब ज़्यादा परेशानी आती है।
1: तो आपके कहने का मतलब ये है कि जो काम है उसको, जो मौसम ठंडा ठंडा होता है थोड़ा, तो उसी में निपटा दें, और जो धूप होती है
2: उसमें आराम करें,
1: उसमें आराम
2: की जगह मिल जाए। लेबर है तो अपना कहीं पेड़ है कुछ है या शेड है, कहीं भी किसी तरह की जगह है उनको वहाँ पर अपना।
1: तो डॉक्टर साहब ये तो बात रही कि धूप से गर्मी से कैसे अपना बचाव कर सकते हैं, अब ये जो मौसम होता है ना बीमारियां भी हो जाती हैं, तो कौन कौन सी बीमारियां ज़्यादा होती हैं इस मौसम में?
2: खास तौर से जो है आपको एक तो उल्टी दस्त आते हैं, दूसरा बाजार का खाना पीना कहीं खा लिया, कोल्ड ड्रिंक पी ली तो गला खराब हो जाता है, पेट खराब हो जाता है, उससे लूज मोशन हो जाते हैं, तो बचाव करें। बाजार का खाना कम से कम खाएं, ना खाएं तो अच्छा है, और यदि बहुत ज़्यादा मजबूरी है तो बहुत हल्का या कम खाएं।
1: तो जैसे आपने बताया कि दस्त की बीमारी हो जाती है, उल्टी की बीमारियां भी हो जाती हैं,
2: हीट स्ट्रोक
1: हो जाता है,
2: बुखार आ जाता है,
1: बुखार भी आ जाता है, अब बच्चों में जैसे डायरिया भी होता है, तो इसके क्या कुछ कारण हैं?
2: डायरिया का भी एक मेन कारण है धूप में, यदि घर में रहते तो नहीं होता इतना, लेकिन बाहर के आना जाना रखते हैं, औरतें हैं बच्चों को लेकर कहीं रिश्तेदारी में आना जाना कर रही हैं, और धूप में गर्मी में है तो उनको उल्टी दस्त के ज़्यादा चांसेस है।
1: तो जिन बच्चों को मान लीजिए डायरिया हो गया है, कभी ऐसा देखा जाता है उल्टी भी है और उसको
2: लूज मोशन भी है,
1: तो किस तरह से इस बीमारी पर काबू पाया जा सकता है?
2: सबसे पहले तो उनको यही है कि थोड़ा सा उसको कोई उल्टी के लिए सबसे पहले जाना पड़ेगा, क्योंकि उल्टी जब तक नहीं रुकेगी दस्त वाली दवा भी नहीं पचेगी, तो सबसे पहले उसको उल्टी कंट्रोल करने के लिए लिक्विड आता है उल्टी के रोकने के लिए, उसके बाद ORS का पानी पिलाइए उसको, ORS का लिक्विड भी आता है रेडीमेड बना हुआ, और ORS का जो पैकेट खोल के बना सकते हैं। तीसरा फिर उसको दस्त की दवा दें, कोई इन्फेक्शन है तो उसके लिए एंटीबायोटिक देनी पड़ सकती है, इन्फेक्शन नहीं है पेट में ज़्यादा तो खाली जो है दूध मोशन के लिए कोई टैबलेट वगैरह या लिक्विड में दे सकते हैं।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि बहुत दूर दराज में कोई रहते हैं, मान लीजिए रात में ये दिक्कत हो गई, अब वो डॉक्टर साहब के पास जा नहीं सकते उस दौरान, तो उस दौरान वो क्या कुछ उपाय अपना सकते हैं?

0: घरेलू उपाय हैं, नमक चीनी का घोल ले सकते हैं, ORS तो लगभग गांव गांव आजकल सब जगह मिल जाता है क्योंकि आशा आंगनबाड़ी के सबके पास में ORS रहता है, तो ORS का पानी तो पिला ही दें कम से कम, यदि और दवा भी नहीं मिलती है कोई, और दवा मिल जाए आप, क्योंकि अब तो स्टोर भी काफ़ी लगभग हर गाँव में एक आध कहीं ना कहीं स्टोर है, तो वहाँ से उल्टी की दवा तो ले ही सकते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब, जैसे अभी आप ORS की सिफारिश बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए क्या चीज़ है ORS?
0: एक जीवन रक्षक घोल है
1: जी,
0: और खाली दस्त उल्टी के लिए नहीं है, ये किसी भी हीट स्ट्रोक में गर्मी के समय में, या आप तो देख रहे हैं कि हमें थकान भी हो रही है कहीं पे, कमजोरी महसूस कर रहे हैं, तब भी ORS का घोल जो होता है काम।
1: तो कहने का मतलब आपका यही हो गया कि अगर मान लीजिए कोई हमें बीमारी भी नहीं है गर्मी के मौसम वाली,
0: तब भी उसको ले सकते हैं,
1: तब भी हम उसको ले सकते हैं। अच्छा, हम जानना चाहेंगे कि अगर कोई अपने आप को स्वस्थ रखना चाहता है कि भाई हम अपने स्वस्थ रहें, तो किस तरह से उसकी दिनचर्या होनी चाहिए?
0: दिनचर्या तो यही है कि सुबह जल्दी उठे
1: जी,
0: कुछ एक्सरसाइज व्यायाम अपना करें, काम भी करें लेकिन व्यायाम सबसे पहले है ताकि इससे इसमें फुर्ती आ जाए। दूसरा, कम खाना और गम खाना, ये दोनों चीज़ साधन ऐसी है जिससे हमेशा स्वस्थ रहोगे, मन भी शांत रहेगा और शरीर भी ठीक रहेगा।
1: बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने कही है, जो कार्यक्रम चल रहा है सेहत सही लाभ कही, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
0: बहुत अच्छा है प्रोग्राम आपका ये, और इस चीज़ को जागरूकता के लिए जगह जगह इसको सुनाया जाए, बताया जाए, जो भी अच्छे आपके जो कहीं पे इस तरह की क्लिप मिलती है तो आपको जो बाहर उसको पब्लिक में सुनाया जाए।
1: आखिर में हमारे जो सुनने वाले हैं श्रोता हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगे?
0: गर्मी से बचें, थोड़ा सा तंग हो सकता है, जितना हो सकता है ये नहीं कि काम बंद कर दें, बाहर का बाजार का खाना कम से कम खाएं, बहुत ही मजबूरी में बाहर का खाना खाएं, घरेलू लिक्विड जरूर लें, मट्ठा हो, कोई मैंगो का जो आजकल जैसे पना बना लेते हैं वो ले लो, बेल पत्थर का जूस ले लो, ORS का पानी ले लो, ये घर से लेकर चलें कुछ, और घर से एक बोतल पानी भी लेकर चलें उसमें।
1: बिल्कुल डॉक्टर RK शर्मा जी, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी है रेडियो के माध्यम से, और हमारे जो सुनने वाले हैं समुदाय के लोग हैं ज़रूर आपकी बातों का ध्यान रखेंगे, और जो भी आपने बातें बताई हैं उनको अपने जीवन में अपनाएंगे। हमसे बात करने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: पाँच से नौ साल के बच्चे हर हफ्ते लें आयरन की सिर्फ एक गुलाबी गोली। सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में निःशुल्क उपलब्ध। एनीमिया फ्री इंडिया, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
1: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
2: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

धरती मेरी धरती लीजिए प्रस्तुत है विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार और प्रसारित किए जाने वाले विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की 30वीं कड़ी, मौसम में चाहे और अनचाहे बदलाव। श्रोताओं, पिछले भाग में आपने मौसम की भविष्यवाणी के बारे में जाना। वैज्ञानिक मौसम का पूर्वानुमान कई कारकों के आधार पर लगाते हैं। कारक हैं तापमान, हवा का दाब, दिशा तथा नमी। आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं। आंकड़ों के गहन अवलोकन तथा विश्लेषण से पिछले आंकड़ों व अनुभवों के आधार पर आने वाले मौसम का पूर्वानुमान लगाया जाता है। तो लीजिए आगे सुनिए विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की 30वीं कड़ी, मौसम में चाहे और अनचाहे बदलाव।

0: चलना मानव जल्दी तैयार हो, इतनी लेट करा रहे सब कुछ।
1: सुबह सुबह तैयार करा रहे और वो भी गांव जाने के लिए।
2: मानव अब मुंह मत बना, एक तो विवेक भैया हमें अपने कॉलेज के टूर पर ले जा रहे हैं और ऊपर से तू नखरे दिखा रहे हैं।
1: चलो भाई हो गया तैयार सब।
2: अरे मानव ये मुंह क्यों लटका के रखा है तूने?
0: आप ही बता।

0: चलो अच्छा है, तीनों की आज की छुट्टी बढ़िया कटेगी। अरे कॉलेज वाले बच्चों का परिचय ग्रामीण जीवन से करा रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। अरे तुमने ये मुंह क्यों लटका लिया? अरे शाम तक तो बच्चे आ ही जाएंगे और मैं भी तो हूं ना यहाँ पे।
1: वो तो ठीक है जी, पर बेचारा मानव कैसा दिख रहा था ना वो, ये लोग उसे ज्यादा तंग तो नहीं करेंगे
0: अरे
1: ना?
0: तुम भी वसुधा बस अब, अरे अपने भाई के साथ गया है, कुछ सीख के ही आएगा। चलो अब तुम नाश्ता लगाओ। चलो अरे चलो ना, हंसो थोड़ा सा, मैं भी तो हूँ यहाँ पे।

0: क्या मुखिया जी, इस साल तो बारिश के लिए तरस ही गए हम।
1: हाँ बुधौ।
2: राम राम मुखिया जी।
1: अरे दीनू दीनू आओ आओ आओ, लो कभी बैठ के आओ।
0: हाँ भाई दीनू, बारिश तो हो नहीं रही, तब तक हुक्का ही गुड़गुड़ा लो।
2: क्या बुधाई, बारिश नहीं हो रही है तो उसे लाने का जतन करो ना, मुखिया जी के यहाँ भीड़ लगाने का क्या फायदा। हाँ लो गंगा भी आ ही गई।
3: राम राम मुखिया जी।
1: अरे हाँ राम राम, बैठो बैठो बैठो गंगा बेटिया बैठो। हाँ
0: अब क्या बताएं तीनों, बारिश न होने के कारण जल भैरू बाबा की मांग ही इतनी ज्यादा है। अभी सालीग्राम के खेत में बैठे हैं अपनी धुनी रमा के।
1: हाँ?
0: दोपहर तक आएंगे।
1: अच्छा
2: अब बताओ, बारिश नहीं हुई तो फिर से बाबा का धंधा चमक गया। हाँ? अब मौसम परिवर्तन हो रहा है तो इसमें जल भैरू बाबा क्या कर लेंगे।
0: ऐसा ना कहो दीनू, जल भैरू बाबा ने कई बार मुसीबत से निकाला है हमें।
3: वैसे लगता है कि आज बारिश जरूर आएगी।
2: हाँ गंगा आ जाए, हमने तो पूरे खेत तैयार कर रखे हैं। अरे मुखिया जी, आज अपने प्रोफेसर बलदेव जी अपने कुछ विद्यार्थियों के साथ आने वाले थे, क्या हुआ उनका?
1: अरे भाई दीनू, प्रोफेसर साहब आने वाले हैं, वो असल में गांव की समस्याओं का आकलन करेंगे और शायद कुछ नए बीज भी लेकर आएंगे।
0: हाँ मुखिया जी, अपने प्रोफेसर बलदेव जी पौधे के वैज्ञानिक होने के साथ साथ बहुत भले इंसान भी हैं।
1: हाँ, ये बात तो सही है।
3: मुखिया जी, लगता है कॉलेज के बच्चे आ गए।
1: अरे हाँ, आ गए आ गए।
4: राम राम मुखिया जी। राम राम, कैसे हैं भाई आप सब लोग?
1: अरे आओ आओ प्रोफेसर, आओ आओ, सब मजे में है, बैठो बैठो बैठो।
0: नमस्कार प्रोफेसर साहब।
4: नमस्कार बुधिया।
0: आज बच्चे कुछ कम हैं।
4: अरे भाई, आजकल वो पोलियो उन्मूलन अभियान चल रहा है ना, तो बस कुछ बच्चे घर घर जाकर पोलियो की दवा पिला रहे हैं।
2: अरे प्रोफेसर साहब, वही दो बूंदे जिंदगी की।
4: भैया बिल्कुल वही।
1: सही कह भाई, सही कह।
0: पर प्रोफेसर साहब, हम तो दो बूंद बारिश के लिए ही तरस गए, उसे लाने के कुछ उपाय हो तो बताइए।
4: अरे बताते हैं भाई, सब बताते हैं, पहले जरा बैठ तो जाए।
0: हाँ बैठिए बैठिए ना, बैठिए।
4: आओ बच्चों आओ,
0: सब लोग बैठिए बैठिए, सब आइए।
4: मुखिया जी, ये हमारे कॉलेज के बच्चे विवेक, सुरेश, हेमंत, अभिषेक, रमा और पूर्णिमा है।
5: नमस्ते।
1: अरे नमस्ते नमस्ते बच्चों, बैठो बैठो बैठो। अरे प्रोफेसर साहब, ये जो दो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये कौन है और ये छोटा सा लड़का कौन है जिसने अपना प्यारा सा सुंदर सा मुंह फुला के रखा है? आ बेटे इधर आओ, इधर हमारे पास आओ।
4: मुखिया जी, ये सृष्टि और मानव है, ये विवेक के छोटे भाई बहन है।
1: अच्छा,
4: विवेक हमारे कॉलेज का बहुत होशियार बच्चा है, हमेशा फर्स्ट आता है।
1: अरे वाह
4: भाई, इस बार और बच्चे कम थे तो सोचा कि मानव और सृष्टि को भी साथ ले लें।
1: अरे बहुत अच्छा किए, बहुत अच्छा किए। अरे सुनती हो भाई, अरे सब बच्चे आ गए हैं, चाय नाश्ता तो भिजवाओ। और हाँ, दो गिलास दूध भी, यहाँ दो छोटे छोटे बच्चे भी हैं।
2: आप प्रोफेसर साहब, आप बारिश लाने की बात बता रहे थे।
0: हाँ प्रोफेसर साहब, हम सब तो अपने खेत पूरी तरह तैयार करे बैठे हैं।
2: हाँ।
0: पर पानी ही नहीं बरसता।
4: हाँ बुधिया, अब या तो पानी बरसता नहीं, और या बरसता है तो इतना बरसता है कि फिर बाढ़ ही आ जाती है।
3: प्रोफेसर साहब, मौसम तो अब धोखा देने लगा है।
4: ठीक कहा गंगा, पर मौसम को धोखेबाज हमने ही तो बनाया है।
2: वो कैसे, हमने कैसे?
4: भाई हमारे द्वारा फैलाए गए प्रदूषण से ही सब सत्यानाश हो रहा है, और आदमी तो अपने को इतना महान समझने लगा है कि बारिश भी अपनी मनमर्जी से करा ले रहा है।
3: बारिश भी अपनी मनमर्जी से? प्रोफेसर साहब थोड़ा विस्तार से बताओ।
4: भाई विवेक, चलो तुम लोग ही जरा कृत्रिम यानी बनावटी बारिश के बारे में बताओ।

0: जी जी सर।
1: अरे भाई, पर पहले ये मानव और सृष्टि को मेरे पास तो बिठाओ। अरे बच्चों, बूढ़े आदमी के पास बैठोगे तो और आनंद आएगा।
2: नहीं अंकल, हम यहाँ विवेक भैया के पास ही ठीक है।
1: अरे अंकल, ये अंकल क्या होता है? अरे बेटा, दादाजी बोल, दादाजी। चल चल जरा और अपने भैया को बताने दे भैया को। अरे सुनो भाई, जरा अपने मानव बेटे और सृष्टि बिटिया के लिए देसी घी का बढ़िया सा हलवा भी बना दो।
3: अब भैया जी, बच्चों के लिए सब कुछ और हमारे लिए कुछ भी नहीं।
1: दिनू, अरे तुम विवेक बेटे की बात सुनो। और हाँ भाई, बच्चों के लिए तो जीवन दे देते हैं, हलवा क्या चीज है।
4: हाँ विवेक भैया, बताओ वैज्ञानिक कैसे बनावटी बारिश करा लेते हैं?
0: सुनो भैया, बनावटी बारिश असल में कुछ रसायनों की मदद से एक निश्चित क्षेत्र में की जाती है।
3: तो भैया, वो रसायन हमें भी बता दो तो आज ही खरीद कर पानी बरसवा।
5: अब दीनू भैया, तुम सुनने दोगे तो पता चलेगा ना। हाँ विवेक बताओ।
0: बारिश बनाने की दिशा में अमेरिका में 1940 में शुरुआत की गई। पहले तो लोग को ये पता ही नहीं था कि बारिश की परिस्थितियाँ कैसे बनती हैं, इसलिए लोग बाबाओं आदि के चंगुल में फंस कर बेवकूफ बनते रहे। फिर 1940 में उन्हें पता लगा कि कुछ बर्फ के कण और धूल के कण बादलों में बड़ी पानी की बूंदों के लिए आवश्यक होते हैं।
4: विवेक भैया, अभी आपने कहा कि पहले लोग बाबाओं से बेवकूफ बनते रहे, हमारी गंगा तो आज ही बेवकूफ बनकर आ रही है।
3: बुधाई ठीक कह रहा है, गंगा गांव में बारिश कराने के लिए जल भैरव बाबा को बुक करा के आई है।
6: भाई ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसे तो बारिश नहीं होगी। हाँ, तुम्हारी जेब थोड़ी हल्की जरूर हो जाएगी।
5: क्या प्रोफेसर साहब, हमने तो सुना है कि तानसेन मेघ मल्हार गाकर बारिश करवा देते थे।
1: हाँ गंगा, तूने जरूर सुना होगा तानसेन को गाते हुए।
6: असल में मुखिया जी, जैसा विवेक ने बताया कि पहले लोगों को बारिश की परिस्थितियों और बादल के बनने के बारे में जानकारी ही नहीं थी, इसीलिए कभी तांत्रिक कभी ओझा या फिर बाबाओं के भरोसे रहते थे।
2: और पता, ये सारे प्रयास खेती के कारण किए जाते थे। ज्यादातर किसान और जमींदार ही अपनी फसल के लिए टोटके अपनाते थे। अगर किसी बाबा के धुनी रमाते ही कभी तुक्के से बारिश हो जाती थी तो बस बाबा जी की वाहवाही, और नहीं हुई तो उसका दोष गांव वालों के पापों पर पड़ता था।
6: बिल्कुल ठीक कहा पूर्णिमा बेटी। असल में वैज्ञानिक रूप से कृत्रिम बारिश भी खेती और फसल की अच्छी पैदावार के लिए ही शुरू की गई थी।
0: हाँ, जिन इलाकों में सूखा पड़ता था वहाँ वैज्ञानिक तरीके से बारिश कराई जाती थी, जिससे फसल बर्बाद होने से बचाई जा सके।
2: बिल्कुल ठीक विवेक। बारिश के बादल कैसे बनते हैं जब ये पता लगा तो अमेरिका में कुछ इलाकों में बारिश की परिस्थितियां पैदा करने के लिए हवाई जहाज से सूखी पाउडर बर्फ यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या सोडियम क्लोराइड के नरम पाउडर का छिड़काव किया गया, इसे सीडिंग कहते हैं।
6: अच्छा। इस प्रक्रिया द्वारा बादलों का घनत्व बढ़ जाता है, फिर सिल्वर आयोडाइड और सूखी बर्फ जैसे अति शीतल करने वाले रसायनों की मदद से पानी की बड़ी बूंदें तैयार की जाती हैं, और फिर ये झमाझम बारिश के रूप में बरस पड़ती हैं।
0: और एक बात और बताऊं, ये अति शीतल करने वाले रसायन बादलों का तापमान -5 डिग्री से -15 डिग्री सेंटीग्रेड तक कर देते हैं।
2: विवेक भैया, ये तो बहुत अच्छा है। जब बादल बनाने आते हैं और बारिश करनी आती है तो फिर यहाँ भी करवा दो, पानी की परेशानी ही खत्म।
1: वाह सृष्टि बिटिया, बिल्कुल ठीक सोचा। अरे मानव, तुम भी यही सोचते हो ना?
2: जी अंकल।
1: अरे फिर अंकल है? दादाजी बोल, दादाजी। अरे ले, तेरा दूध भी आ गया, इसे पीकर अपने दिमाग से अंकल निकाल दे। अरे पी ले ले सृष्टि बिटिया, तू पी ले।
3: आप तो चाय पसंद करते हैं, है ना?
6: जी,
3: चाय लीजिए।
1: भैया सब लोग पियो, बच्चों तुम लोग भी लो ना, सब लोग। हाँ लो भाई लो चाय, सृष्टि बेटा तुम भी दूध पियो ना। अरे माना पियो बेटा।
2: हाँ हाँ, तो सृष्टि जो तुमने कहा बारिश यहाँ भी करा ले, असल में 1940 में अमेरिका द्वारा किए गए प्रयोग व्यवहारिक और अव्यवहारिक दोनों स्तर पर ही पूरी तरह सफल नहीं हुए।
6: बिल्कुल ठीक कहा पूर्णिमा बेटी। असल में बादल कहीं और बनते थे और बारिश कहीं और होती थी। इसीलिए 1956 में अमेरिका में ये प्रयोग लगभग बंद कर दिए गए। हालांकि छोटे बादलों से बड़े बादल बनाने में वो सफल रहे, परंतु बारिश हमेशा नहीं होती थी, और होती भी थी तो तब जब बादलों के तापमान की परिस्थितियां बिल्कुल सही होती थीं, और इसके बावजूद वो गलत जगह बरस जाते थे।
1: अच्छा, गलत जगह बताओ।
0: और पहाड़ों पर किए गए प्रयोग सबसे ज्यादा सफल रहे, पर वो पहाड़ी क्षेत्र उन क्षेत्रों से दूर होते थे जहां बारिश की वाकई आवश्यकता थी। असल में बारिश को पैदा करने के लिए सीडिंग से पहले वायुमंडल परिस्थितियां सही होनी आवश्यक है।
1: पर बेटा, अगर सही परिस्थितियां होंगी तो बादल अपने आप ही बरस जाएंगे, अब फिर भला इन प्रयोगों की क्या आवश्यकता है।
6: बिल्कुल ठीक कहा मुखिया जी आपने। इसीलिए कृत्रिम बारिश बहुत आवश्यकता होने पर ही कराई जाती है, और वैसे भी ये बहुत महंगा तरीका है।
1: अच्छा।
6: और कुछ देशों को ही इसमें महारत हासिल है, इसलिए इसकी आवश्यकता ना ही पड़े तो अच्छा है।
4: तो प्रोफेसर साहब, आजकल क्या कोई बनावटी बारिश नहीं करा रहा?
0: नहीं नहीं बुधाई भैया, ऐसा नहीं है। चीन में शंघाई प्रांत में गर्मी के कारण ऊर्जा की मांग इतनी बढ़ गई थी कि गर्मी से राहत देने के लिए वहां कृत्रिम बारिश कराई जा रही है। और पता है इसकी लागत कितनी आई? करीब 3 करोड़ रुपए।
4: 3 करोड़ रुपए?
3: अरे भैया, ये 3 करोड़ रुपए हमारे गांव को वैसे ही मिल जाए तो 3 साल हली ना चले
6: और सारा देश भूखा मर जाए। क्यों
5: क्यों अंकल, सारा देश भूखा कैसे मर जाएगा?
1: अरे वाह वाह वाह वाह, मानव बेटा चलो कुछ पूछा तो सही। अरे बेटे, किसान अन्नदाता है, अगर वो हल नहीं चलाएगा, भैंस नहीं पालेगा, सब्जी नहीं उगाएगा तो सब रोटी दाल दूध कहाँ से ले पाएंगे? बता
6: ना बेटा, हमारा सारा जीवन ही गांव और खेत पर निर्भर है। अरे भाई, तपती धूप में हल चलाकर ही तो किसान अन्न पैदा करता है, जैसे धान गेहूँ,
0: जिससे तेरे लिए रोटी बनती है।
5: पर भैया, आटा दाल दूध तो मम्मी बाजार से मंगवाती है ना?
4: मानो बेटा, पर बाजार में हम ही तो बेच कर आते हैं, और फिर वो दुकानदार तुम्हें दे देता है।
5: लगता है मानव को गांव और खेत के हम पर उपकार समझ आने लगे हैं।
6: पता है मानव, एक महान कृषि वैज्ञानिक ने कहा था कि हम इस धरती पर पौधों और किसान परिवारों के मेहमान हैं, समझे?
1: वाह वाह वाह, बहुत ठीक कहा प्रोफेसर साहब। पर प्रोफेसर साहब, ये कृत्रिम बारिश करवाना मौसम में जानबूझकर दखल देने जैसा नहीं है?
5: ठीक कहा मुखिया जी, ये तो प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ने जैसा है।
1: हाँ।
6: देखो गंगा बेटी, हमारा जीवन खेती पर निर्भर है, इसलिए कभी कभी फसल बचाने के लिए ऐसे कदम उठाए जाते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी तो कृत्रिम बारिश करवाने का ठेका लेती है। वियतनाम ने भी अपने यहाँ सूखे की समस्या से निपटने के लिए इस कंपनी की मदद ली है। वियतनाम ने 2004 से 2010 तक का कृत्रिम बारिश का पूरा खाका तैयार कर लिया है।
0: चीन के बीजिंग शहर में तो धूल बैठाने के लिए कृत्रिम बारिश कराई जा रही है।
4: पर विवेक भैया, ये तो प्रकृति माँ को बेवकूफ बनाने जैसी बात हुई।
1: सही बात है भाई।
5: हाँ भाई, ये तो प्रकृति ही तय करती है कि कहाँ पानी बरसाना है कहाँ नहीं, फिर ये छेड़छाड़ क्यों?
3: वाह गंगा, वाह बुधाई, जल भैर बाबा को बुलाकर खुद ही छेड़छाड़ शुरू की और खुद ही गलत बता रहे।
6: अरे तीनों भैया, जल भैरू बाबा मौसम पर कुछ प्रभाव नहीं डाल पाते, परंतु वैज्ञानिक तो मौसम को बदलने की क्षमता विकसित करने में लगे हैं कि कैसे मनचाही जगह बारिश करवा दें। इसी उधेड़बुन में लगे हुए हैं कुछ मौसम विज्ञानी।
1: अरे शुरू शुरू में ये मौसम बदलने की किसको सूझी है? तो ये बताओ, अमेरिका वालों को या कोई और भी देश को?
4: हाँ, बताइए
6: मुखिया जी, मौसम बदलने की कोशिश तो मानव कई शताब्दियों से करता रहा है। कभी ओझाओं की मदद लेकर, तो कभी सिल्वर आयोडाइड के कणों की मदद से।
4: हाँ।
6: लेकिन सिर्फ फसल पैदा करने के लिए ही नहीं, बल्कि कई बार तो अच्छी पैदावार बचाने के लिए भी मौसम में बदलाव करने पड़े।
3: वो कैसे प्रोफेसर साहब?
0: मैं बताता हूँ दीनू भैया, आप तो जानते ही हैं बड़े ओलों की बारिश से भी तो फसल बर्बाद होती है, खास तौर से मुलायम और नाजुक फलों की फसल। जानते हैं पहले जमाने में ये सोचा जाता था कि ऊंची आवाज से ओलों के आकार को छोटा किया जा सकता है। इसके लिए हवा में गोलियां चलाई जाती, गिरजाघरों में बड़े बड़े घंटे बजाए जाते थे।
6: पर इस सब से कुछ हुआ नहीं, बल्कि कई बार तो घंटे बजाने वाले बिजली गिरने से मर गए। ऐसा उत्तरी इटली के पोथाई क्षेत्र में स्थित अंगूर की बेलों को बचाने के लिए किया गया।
2: हाँ, और पता इटली के इसी क्षेत्र में हर गर्मियों में बादलों के पूरी तरह बनने से पहले सिल्वर आयोडाइड से भरे 50,000 रॉकेट दागे जाते हैं। इससे बादलों की नमी ओलों में बदलने की जगह बारिश की बूंदों में बदल जाती है, या फिर ओलों का आकार बहुत छोटा हो जाता है जिससे फलों को नुकसान नहीं होता। हालांकि इस पूरी प्रक्रिया को अभी वैज्ञानिक पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं, पर इससे फायदा तो हो रहा है।
3: अच्छा, हाँ।
6: इसी तरह बिजली गिरने से पश्चिमी अमेरिका और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग का खतरा रहा है। इससे बचाव के लिए घने बादलों में बिजली से आवेशित एल्यूमिनियम की पतली पन्नी को छोड़ा जाता है। इसके नतीजों के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता।
0: ऐसे ही जब हवाई अड्डों पर धुंध छा जाती है तो तेल के बर्नरों को जलाकर तापमान बढ़ाकर धुंध हटाने की कोशिश की जाती है, जिससे हवाई जहाज आसानी से हवाई पट्टी पर उतर सके।
6: पर ये सभी मानव के ऐसे दखल हैं जो उसने जानबूझकर अपने फायदे के लिए किए, यानी सोच समझकर मानव ने ये बदलाव मौसम में किए और करने चाहिए। लेकिन इनका पूरे वायुमंडल या महासागरों पर प्रभाव ना के बराबर रहा। लेकिन बिना सोचे समझे कुछ ऐसे बदलाव भी मानव ने किए जिनका प्रभाव सृष्टि के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है।
2: हैं? अंकल, मैंने ऐसा क्या कर दिया कि सृष्टि दीदी खतरे में पड़ जाएगी?
1: अरे मानव बेटा, तू नहीं बल्कि वो मानव जो आज अपने ज्ञान के अहंकार से इस धरती को नष्ट करने पर तुला है। पर बेटे मानव, तुझे तो ज्ञान प्राप्त करके इस प्यारी सृष्टि को बचाना है। क्यों
2: जी अंकल?
1: अंकल फिर अंकल हैं? अरे मानव के इसी जिद्दीपन के कारण और प्रकृति की भावनाओं को ना समझ पाने के कारण हम आज ऐसी स्थिति पर पहुंच गए। अरे बेटे, अरे तू तो मेरी भावना समझ। दादाजी बोल, दादाजी अंकल नहीं।
4: प्रोफेसर साहब, मन चाहे मौसमी बदलाव को तो हम भी चाहते हैं, पर ये अनचाहे मौसमी बदलाव हैं कौन से?
6: अरे बुधाई भैया, आज इंसान ये जान चुका है कि मौसम में परिवर्तन करने से ज्यादा जरूरी है महासागरों और वायुमंडल प्रणाली को दूषित होने से बचाना। आज जीवाश्म ईंधन जैसे पेट्रोल डीजल आदि को जला जला कर हमने इतनी कार्बन डाइऑक्साइड हवा में झोंक दी है कि धरती का तापमान बढ़ना शुरू हो गया है, और तापमान में थोड़ी सी भी वृद्धि भयानक तबाही ला सकती है।
1: बुधाई समझ रहे हो ना?
4: हाँ मुखिया जी, समझ रहे हैं।
0: ऐसे ही मनुष्य ने अनजाने में इतने रसायन वातावरण में छोड़ दिए हैं जिनसे जीवन को खतरा हो सकता है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड। इससे भी ताप संतुलन, अवशोषण, परावर्तन प्रक्रियाएं आदि बिगड़ सकती हैं।
2: हाँ, और इन्हीं सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रेट्स आदि की वजह से बादल बनने की प्रक्रिया भी गड़बड़ा जाती है।
1: अच्छा,
5: तो इस प्रदूषण के कारण ही बादल बारिश नहीं ला पा रही हैं।
6: अब गंगा इसे पूरी तरह तो नहीं माना जा रहा, पर प्रदूषण की नकारात्मक भूमिका जरूर है। यही नहीं गंगा, हमने तो महासागरों में भी जहर घोल दिया है, जैसे कीटनाशी, पारा, तेल रिसाव, नाभिकीय कचरा आदि भी महासागरों को दूषित कर रहे हैं, जिससे समुद्र में जीवों का संतुलन गड़बड़ा रहा है। सीप और शंख बनाने वाले जीवों की संख्या में कमी आ रही है, जिससे सागर के पानी में अम्लता बढ़ रही है।
0: और इसका सीधा असर हमारे जीवन के साथ साथ मौसम पर भी पड़ रहा है।
1: अच्छा भाई,
2: देखो, हाँ, मानव ने विकास के नाम पर बड़े बड़े उद्योग लगाए, रॉकेट, हवाई जहाज आदि भी बनाए, अपनी सुविधा के लिए एसी, फ्रिज, परफ्यूम आदि भी तैयार किए, पर विकास की इस अंधी दौड़ में वो प्रौद्योगिकी की कीमत भूल गया और वायुमंडल को तबाह करने लगा।
0: एसी, फ्रिज आदि से निकले क्लोरो फ्लोरो कार्बन रसायन ने हमारी धरती की छतरी ओजोन को तहस नहस कर डाला।
2: हाँ विवेक भैया, आपने बताया था कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन की परत में अमेरिका जितना छेद हो गया है। ये ओजोन हमें खतरनाक पराबैंगनी किरणों से बचाती है।
7: अरे हाँ बेटा, ये अनचाहे बदलाव अब सच्चाई बन गए। अब हमें इन्हें रोकने की दिशा में कदम तो बढ़ाने ही होंगे।
6: जी मुखिया जी, पारंपरिक ज्ञान और बुजुर्गों के अनुभव का फायदा लेना होगा। देखिए, पहले हम कम बारिश के मौसम में मोटा अनाज और तिलहन उगाते
7: थे। उगाते थे भाई, हाँ, सही।
6: आज गहन कृषि पद्धति के चलते हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं।
2: हाँ, प्रदूषण नियंत्रण के साथ साथ हमें अपनी पुरानी कृषि और जीवन की पद्धति को भी अपनाना होगा। पर पुराने लोग, मेरा मतलब है कि बूढ़े लोग हमारी क्या मदद कर पाएंगे?
7: अरे बेटा, ए बेटा, सिर्फ बुढ़ापा नहीं है बुजुर्गों के पास, अनुभव और भावनाओं की पूरी पिटारी है। हमारे अनुभव को नए ज्ञान से जोड़कर ही उज्जवल भविष्य बनाया जा सकता है, समझ रहे हो?
2: हमारे दादाजी कहते हैं, तीर को जितना पीछे खींचो उतना ही दूर जाता है।
7: सही कहते हैं बिटिया।
6: बिल्कुल, वाह सृष्टि, बहुत बढ़िया बात कही भाई। मानव ने मन चाहे अनचाहे बदलाव मौसम में किए हैं। अब हमें अपने पुराने अनुभवों से सीखने का वक्त है। इस धरती पर जीवन हमेशा बना रहे, इसके लिए हमें विकास के नाम पर की जा रही अपनी हर हरकत के नतीजों को ध्यान में रखना होगा।
7: बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही।
2: अरे बरसात की बूंदें पड़ने लगी, ये तो कमाल हो गया। चल तेरे बाबा की चाहे बगैर ही पानी बरस गया। अरे छोटू, अरे विदा कर दे बाबा को, कह दे अब हम भी जानते हैं कि बारिश कैसे आती है।
1: क्यों मानव, गीली मिट्टी की गंध कैसी है?
2: बहुत अच्छी भैया।
6: अच्छा मुखिया जी, अब हम लोग चलते हैं। देखिए ना, बारिश शुरू हो गई, ये भी बढ़िया रहा। वैसे मैं ज्वार बाजरा के नए बीज लेकर आया हूँ, बारिश अच्छी रहे तो बढ़िया है, वरना इन्हें बो दीजिएगा।
7: अरे वाह वाह, धन्यवाद प्रोफेसर साहब। हाँ, अरे आपसे बात करके हमेशा ही अच्छा लगता है। आपसे बातें रहिएगा है। और देखो भैया, अब ये प्यार की बारिश थमनी नहीं चाहिए है? और हाँ, अरे अपने साथ हमारे इस प्यारे सुंदर से मानव को जरूर लाना। क्यों मानव, आओगे ना बेटे?
2: जी दादाजी।
8: धरती मेरी धरती, अभी आप विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार और प्रसारित किए जाने वाले विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की 30वीं कड़ी सुन रहे थे, मौसम में चाहे और अनचाहे बदलाव।
9: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है, और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
10: The world is here.

0: हाय, मैं अरुण विजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: मुझे भी तो मेहंदी लगा दे, देख लो 2 महीने के इलाज में इतना सुधार है तो अब तो मैंने दवा खानी भी बंद कर दी है।
2: टीबी की दवा तो 6 से 8 महीने लगातार चलती है, इसका मतलब कि आपने डॉट्स का कोर्स बीच में ही बंद कर दिया।
1: ये क्या, मेहंदी अधूरी क्यों छोड़ दी?
2: तुम डॉट्स का इलाज अधूरा छोड़ सकती हो और सोचती हो कि बात बन जाएगी? जानती हो ना, अधूरा इलाज यानी टीबी ला इलाज।
3: डॉट्स का इलाज अधूरा ना छोड़े, ये इलाज 6 से 8 महीने लगातार चलता है। अधूरे इलाज से टीबी बिगड़ जाती है और इलाज कठिन हो जाता है। याद रखें, पूरा कोर्स तो पक्का इलाज।
2: भाभी कल ही डॉट सेंटर चली जाना।
1: कल नहीं, अभी।
3: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।

0: जी हाँ, केवल 45 मिनट के रोजाना योग से दिमाग रहता है चुस्त, मन दुरुस्त और शरीर तंदुरुस्त, वो भी बिना किसी खर्चे के। भारत के इस विज्ञान को अब दुनिया भर के लाखों लोगों ने माना है। आप भी योग अपनाइए और अपने परिवार को भी कराइए।
1: आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: 45 मिनट योग करने से बीमारियां दूर रहती हैं और आप स्वस्थ रहते हैं। योग एक ऐसा विज्ञान है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत उपयोगी है।
1: आओ करें सब योग।
2: आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाए और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: बाबू क्या हुआ?
2: हम रोज 29 की रात को सोते हैं और जब सुबह उठते हैं ना तो वापस 29 होती है।
1: मतलब
2: हमारी 30 नहीं आ रही है तितली।

0: हाय, मैं हूं विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: शादी में पूरे गांव को दावत देंगे। एक एरोप्लेन में कायलपट्टन के लोग होंगे, दूसरे में नरसापुर। हे बाबू, हाँ बोल दे, तेलुगु में हाँ कैसे बोलते हैं?

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं, और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को, सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: मेरा नाम गोलू है, मुन्नी का बड़ा भाई। एक दिन स्कूल से आया तो देखा मुन्नी रो रही थी, सोचा प्यास लगी होगी, मैं भर

0: की दादी के पास गया, बोला मुन्नी को पानी पिला दो ना। दादी ने एकदम मना कर दिया, बोली 6 महीने तक मुन्नी सिर्फ मम्मी का दूध पिएगी, और कुछ खिलाया पिलाया तो 10 हो सकते हैं। अगली बार मुन्नी रोई ना, मैंने उसके कान पे जाके कह दिया 6 महीने तक सिर्फ मम्मी का दूध पीना है।
1: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी ही अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।
3: हाय, मैं उरन विजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।

0: इस तरह सुपर हीरो जल रक्षक ने पानी बचा के पूरी दुनिया को बचाया।
1: वाओ, जल रक्षक की कहानी तो कमाल है अप्पा।
0: जल रक्षक है नाम हमारा, पानी बचाना काम हमारा, खुद का पानी खुद निगरानी। तारा अब तुम सो जाओ, कल सुबह चमन तुम्हारे साथ खेलने आने वाला है।
1: बहुत मजा आएगा।
2: हाय तारा।
1: ओह हाय चमन, आओ मेरे साथ फल खाओ, फिर हम खेलेंगे।
3: मैं बस साबुन से हाथ धोकर आता हूँ।
1: अरे चमन पानी वेस्ट कर रहा है, लगता है सुपर हीरो जल रक्षक को फिर से पानी बचाना पड़ेगा।
2: अरे तारा ये क्या?
1: तारा नहीं, जल रक्षक तारा। जल रक्षक है नाम हमारा, पानी बचाना काम हमारा, खुद का पानी खुद निगरानी। हर दिन हर व्यक्ति को जितना पानी पीने और खाना बनाने में लगता है, लगभग उतना ही पानी एक व्यक्ति साबुन को हाथ पर या बर्तन पर मलते समय, ब्रश करते समय या दाढ़ी बनाते समय नल को खुला रखने से बर्बाद कर देता है।
3: अच्छा, मैंने तो ये सोचा नहीं था तारा। ओ, मेरा मतलब जल रक्षक तारा।
1: और नलिया पाइप में केवल एक लीकेज से ही हर दिन लगभग उतना पानी बर्बाद हो जाता है जितना एक व्यक्ति एक दिन में घर के सारे काम करने के लिए उपयोग करता है।
2: अरे बाबा रे,
1: आज भी हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें शुद्ध पानी नहीं मिलता। जरा सोचो चमन, ये समस्या है कि नहीं? मुझे लगता है ये बहुत बड़ी समस्या है।
3: हाँ तारा, सच्ची ये बहुत बड़ी समस्या है।

0: 따라 따빠 따라 मैं थक गया हूँ, मैं थोड़ा सा पानी पी कर आता हूँ, ठीक है?
1: पीने का पानी? चमन रुको, हाथ को खड़ी में डुबोने से ये पानी दूषित हो गया है।
2: हैं? लेकिन पानी दिखने में तो बिल्कुल साफ है।
1: पानी दिखने में साफ हो सकता है, पर जरूरी नहीं कि ये पीने लायक भी हो। पता है, कुछ जल स्रोतों जैसे कम गहरे हैंडपंप का पानी भी दिखने में साफ होता है, पर पीने के लिए सुरक्षित नहीं होता।
2: हैं?
1: पानी में जीवाणु, विषाणु या कई प्रदूषक तत्व हो सकते हैं, जो आंखों से नहीं दिखाई देते और दिखने में पानी साफ लगता है। इसीलिए बिना पानी की जांच किए हम नहीं जान सकते कि पानी पीने के लिए सुरक्षित है या नहीं।
3: अरे बाबा रे, तो फिर

0: बात तो ठीक है जल रक्षक तारा, पर पानी की जांच होगी कैसे?
1: चलो चलो अप्पा से पूछते हैं।
2: ओके
1: अप्पा।
3: अब सरकार की ओर से हर ग्राम पंचायत को जल जांच किट दी जा रही है और हर एक ग्राम पंचायत से 5 महिलाओं को ट्रेनिंग भी दी जा रही है, जिससे हर महीने अपने पंचायत के सभी जल स्रोतों की जल गुणवत्ता जांच और स्वच्छता निरीक्षण सुनिश्चित हो।
2: वाह अंकल, आप भी जल रक्षक?
3: हमारी पूरी फैमिली ही जल रक्षक है।
4: जल रक्षक है नाम हमारा, पानी बचाना काम हमारा, खुद का पानी खुद निगरानी।
2: मैं भी बनूंगा जल रक्षक।

0: पानी में गंदे हाथ या गंदे बर्तन?
1: नो नो नो नो,
2: समझ गया। अब मैं भी जल रक्षक बन गया।
3: जल रक्षक है नाम हमारा, पानी बचाना काम हमारा, खुद का पानी खुद निगरानी।
4: कहीं पानी बर्बाद हो रहा है?
2: लगता है वहाँ जल रक्षकों की जरूरत है।
4: चलो।
0: तुम सब भी जल रक्षक बन सकते हो। आज से अभी से शुरू करो, खुद का पानी खुद निगरानी।
5: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
6: Yeah. Gagan Kokri Fateh.

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: जंगल है, आधी रात है।
1: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: अच्छा सोचिए, जरा सी चोट लगे तो आप क्या करेंगी?
2: दवाई की दराज में से पट्टी निकाल के लगा लूंगी।
1: अच्छा, हल्का सा बुखार हो तो?
2: दवाई की दराज में से गोली निकाल के खा लूंगी।
1: और बच्चे को दस्त लगे तो? क्या हुआ, दवाई की दराज में जगह खत्म हो गई क्या?
3: दस्त के इलाज में देर हुई तो बच्चों के शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है, इसलिए दवाई की दराज में ORS और जिंक भी रखिए और दस्त शुरू होते ही इलाज शुरू कीजिए। दस्त के लिए तैयार रहना, घर में ORS और जिंक है ना? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: नहाने के लिए शावर की जगह हमेशा बाल्टी का उपयोग करें। अगर शावर उपयोग भी कर रहे हैं तो छोटे वाले शावर लगवाएं, जिससे पानी की कम खपत हो। शावर का उपयोग न करके हम 40 से 45 लीटर पानी हर एक मिनट में बचा सकते हैं। फ्लश में भी बहुत अधिक पानी उपयोग होता है, इसलिए ऐसा फ्लश लगवाएं जिसमें पानी का फोर्स कम हो। सुनो शारदा 90.8 FM और यूनिसेफ की तरफ से जनहित में जारी है।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं, और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सॉरी नमी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे प्लीज माफ कर दो।
1: इट्स ओवर, अब सब कुछ खत्म हो चुका है शेर। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अब तुमसे शादी नहीं कर सकती।

0: वॉट इज दिस? मैं 3 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ।
1: सो वॉट, मैं काम में बिजी था यार, तुम मुझसे मिलना चाहती थी, मैंने तो नहीं बोला मेरी वेट करो।
0: You know, Shem, it really hurts.

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। चलिए बात करते हैं हेल्थ की। जो कहते हैं सच कहते हैं कि हेल्थ है तो सब कुछ है। आप अक्सर जिम जाते हैं, जिम जाने से पहले किन किन खास बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इसी के विषय में आज हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, जिम अगर आप जा रहे हैं तो उससे पहले क्या आप खाएं क्या ना खाएं, इसी के विषय में आज हम आपको बताने वाले हैं। उन 5 फूड के विषय में जो आपकी बॉडी को लोहे जैसी मजबूत बॉडी बनाएंगे। जिम में ज्यादा देर तक एक्सरसाइज करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, जो हमें प्री वर्कआउट फूड से बड़े आसानी से मिल सकती है। इनसे सेहत भी अच्छी रहती है और आप खुद को फिट महसूस करते हैं। चलिए यही बात डिटेल में जानते हैं। जिम से पहले जरूर खाएं ये फूड। क्या है खास जानकारी, बात करते हैं। जी हाँ, हमें अपने डाइट पैटर्न में तब बदलाव की जरूरत होती है जब हम जिम जा रहे होते हैं। हालांकि जिम के वक्त शरीर को ज्यादा एनर्जी और स्टेमिना की जरूरत होती है, इसलिए जिम करने से पहले प्री वर्कआउट फूड्स को लेने की सलाह दी जाती है। ये फूड्स स्टेमिना भी बढ़ाते हैं और एनर्जी भी डबल करते हैं। प्री वर्कआउट फूड्स हमेशा हेल्दी और पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए, जिससे पर्याप्त मात्रा में एनर्जी शरीर को मिल सके। इससे एक्सरसाइज करने में भी अच्छे से मदद मिलती है, साथ ही मसल्स की रिकवरी भी सही तरीके से होती है। इतना ही नहीं, प्री वर्कआउट फूड्स में प्रोटीन और कार्ब्स का संतुलन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन दोनों के बीच का सही संतुलन होने से थकान नहीं होती। अगर आप भी जिम जाते हैं तो यहाँ हम आपको कुछ बेस्ट प्री वर्कआउट फूड्स के बारे में बता रहे हैं। ओट्स के विषय में बात करते हैं। ओट्स के बारे में तो हमने सुना ही है। फाइबर, कार्ब्स और अनगिनत पोषक तत्वों से भरपूर ओट्स सेहत के लिए बेहद अच्छा होता है। वर्कआउट से पहले ओट्स खाना फायदेमंद होता है। इससे लंबे समय तक शरीर में एनर्जी रहती है और अच्छे से एक्सरसाइज करने में मदद मिलती है। ओट्स में मौजूद विटामिन बी कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में बदल देता है। वर्कआउट करने से करीब आधे घंटे पहले अनप्रोसेस्ड ओट्स खाने की हिदायत दी जाती है। अब बात अंडे की। वर्कआउट करने से पहले अंडा खाना काफी फायदेमंद माना जाता है। इसमें अमीनो एसिड के साथ साथ प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में होता है, जिससे वर्कआउट करने में ज्यादा मदद मिलती है। अगर आप जिम जाने के 30 से 40 मिनट तक पहले 1 से 2 उबले अंडे या ऑमलेट खाते हैं तो एक्सरसाइज करने में ज्यादा एनर्जी मिल सकती है। बात स्मूदी। स्मूदी पोषक तत्वों का एक बड़ा स्रोत है। बेरी स्मूदी के साथ साथ ग्रीन स्मूदी भी काफी फायदेमंद होती है। इसे वर्कआउट से पहले लेने से कठिन एक्सरसाइज करने के लिए एनर्जी मिलती है। इसके अलावा ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, एवोकाडो, पत्तेदार सब्जियों की स्मूदी भी ट्राई कर सकते हैं। बात केला की। केले को भरपूर एनर्जी का स्रोत माना जाता है। इसके अलावा केले में कार्बोहाइड्रेट और पोटेशियम के भी अच्छे गुण होते हैं। इससे शरीर की नसों और मांसपेशियों को ठीक ढंग से काम करने में मदद मिलती है। केला खाने से डाइजेशन दुरुस्त रहता है। इतनी खूबियों के चलते केला बेस्ट प्री वर्कआउट फूड में से एक है। उबला हुआ चिकन। बात सामने ये आती है कि चिकन को डाइट का अहम हिस्सा माना जाता है। चिकन में मौजूद प्रोटीन शरीर के निर्माण के लिए बेहद जरूरी है। प्रोटीन मसल्स की रिकवरी में भी मदद करता है। थोड़ी सी काली मिर्च और

0: तदनुसार नमक के साथ उबला हुआ चिकन एक अच्छा प्री वर्कआउट फूड में एक है। अब बात करते हैं एनर्जी बार की। जी हाँ, जिम में वर्कआउट करने वालों के पास एनर्जी बार जरूरी होना चाहिए। आप इसे अपने पास स्टोर करके रखने, केमिस्ट दुकान या फिर किसी सुपरमार्केट में इसे आराम से खरीद सकते हैं। एनर्जी से भरपूर एनर्जी बार में कार्बोहाइड्रेट के साथ हेल्दी फैट, प्रोटीन और फाइबर भी मौजूद होता है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरोशारदा 90.8 FM।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कु ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: Sharda School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: The world is here.

0: हाय, मैं अरुण विजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
3: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
3: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
4: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
5: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज़

0: पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
0: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
0: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
2: कम एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट व्हिच मेक्स यू इंडस्ट्री रेडी।
3: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 एफएम कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
2: So, where are you? The world is here at Sharda University.
3: Sharda School of Media, Film and Entertainment, जहाँ सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को, सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो शारदा 90.8
5: FM। वैसे मुझे अमीरों से मिलने का कोई खास शौक नहीं है।
6: तो फिर मुझसे प्यार क्यों किया? हाँ
5: एक कमबख्त दिल है की गलती कर बैठता है और भुगतना हमको पड़ता है
6: तो भुगतो।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
3: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
2: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
3: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
2: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
3: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
2: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
3: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
2: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
4: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
0: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
4: So, where are you? The world is here at Sharda University.

0: शारदा।
1: हाय मैं हूँ रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
2: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
3: बिल्कुल सोचा है पापा।
2: क्या सोचा है?
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
2: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
3: जी पापा।
2: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
3: हाँ पापा बिल्कुल।
4: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
5: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
1: बिल्कुल सोचा है पापा।
0: क्या सोचा है?
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
0: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
1: जी पापा।
0: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
1: हाँ पापा बिल्कुल।
2: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
3: So where are you? The world is here at Sharda University.

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: पाँच साल तक नियमित रूप से अपने शिशु का वजन कराएं।
2: अगर उम्र है ज्यादा और वजन है कम
1: तो नहीं है आपके आहार में दम,
2: न घेरे आपके बच्चे को कोई बीमारी।
1: आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की सहायता से पाएं अपने बच्चे की वृद्धि की जानकारी।
3: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
4: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

0: नेड़े होके भी दूरियां रहिंदियां ने, कुछ मोहब्बतां अधूरियां रह के भी पूरियां रहिंदियां ने।
1: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं, और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के

0: मुलाकात एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग, यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा, यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान, यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग, यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव, अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: मेरी फिल्मों में आपने देखा ही होगा कि अगर विलन को पीटते हुए आधे में छोड़ दिया जाए तो बाद में विलन बदला लेने जरूर आता है और हीरो के लिए बहुत सारी दिक्कतें खड़ी कर देता है। ठीक ऐसे ही अगर हम टीबी का इलाज अधूरा छोड़ दें तो आगे जाके ड्रग रेजिस्टेंट टीबी भी हो सकता है, जिसका उपचार लंबा और कठिन भी है। इसीलिए पूरा कोर्स ही है पक्का इलाज। और सुनिए, टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
2: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
1: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।
4: नमस्कार आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो एक गंभीर विषय है। जी हाँ, पेशाब जिसे हम कहते हैं मूत्र, अगर इसमें खून आ रहा है तो आप एक परेशानी से जूझ रहे हैं। एक्सपर्ट क्या कहते हैं, क्या समस्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो बात सामने आती है कि पेशाब में खून आने की ज्यादातर वजह जैसे कुछ दवाएं, छोटी मोटी चोटें या गुर्दे की पथरी, ये सारी चीजें अस्थायी होती हैं जिनका लंबे समय तक प्रभाव नहीं पड़ता। ज्यादातर लोगों के लिए मूत्र पथ का संक्रमण इलाज योग्य होता है। अगर जल्दी पता लगा लिया जाए तो मूत्र पथ के कैंसर का भी अच्छा पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। मूत्र में रक्त दिखाई देने के अधिकांश मामले आपातकालीन स्थिति नहीं होते हैं। हालांकि यदि आप चक्कर आना, पेशाब करने में असमर्थता या अत्यधिक दर्द जैसे लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। लेकिन जिन लोगों के पेशाब में खून की अधिक मात्रा आ रही है, पेशाब करते समय अधिक दर्द हो रहा है, पेशाब करने में कठिनाई या अक्षमता महसूस हो रही है तो उन्हें उसी समय डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं तो बात सामने आती है कि धैर्य रखना क्यों जरूरी है। अगर आप जिंदगी में धैर्य रखते हैं तो निश्चित तौर पर तमाम बीमारियों से आप अपने आप को बचा कर रख पाएंगे। एक्सपर्ट कहते हैं कि धैर्य मन का वो गुण है जिसके होने से मनुष्य विपत्ति के समय भी विचलित नहीं होता है। धैर्य कठिन परिस्थितियों में भी व्यक्ति की सहन शक्ति की अवस्था है। ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के मन को क्रोध अथवा खीज जैसी अवगुणों के प्रभाव से बचाती है। धैर्य के तीन गुण क्या हैं? एक्सपर्ट कहते हैं कि आत्मनियंत्रण, स्थिति के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने और बिना किसी शिकायत के इसे सहन करने में सक्षम होना, विनम्रता, ये स्वीकार करना कि आप किसी और से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है और ऐसा कोई विशेष कारण नहीं है कि आपको इंतजार न करना पड़े, और उदारता, दुनिया को देखकर मुस्कुराना तब भी जब ऐसा लगे कि ये आपके खिलाफ साजिश रच रही है। तो ये खास जानकारी आपको कैसे लगी बताइएगा जरूर। ऐसी खास अपडेट्स के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।
5: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
6: The world is here.

0: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। टीबी हो जाने पर 6 से 8 महीने का उपचार करवाना होता है, लेकिन अगर इलाज बीच में रोक दिया तो टीबी बिगड़ सकता है और ड्रग रेसिस्टेंट टीबी बन सकता है। DRTB तब होता है जब टीबी की कुछ दवा असर करना बंद कर दे। DRTB का इलाज कठिन और लंबा है, लेकिन मुमकिन है। आधुनिक जाँच और इलाज सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में मुफ्त उपलब्ध है। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800 111-6666 पर संपर्क करें।

0: बुखार का दी एंड। ये
1: तारा तुम कर क्या रही हो तारा?
0: तारा लड़ रही है अब्बा मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों से।
1: ओह

0: मच्छरों पे कैसे करना है वार, ये बताएंगे अगली बार।
1: तुम सब भी हो जाओ तारा की तरह तैयार।
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: लक्षण इसी से तो किसी की पहचान बनती है, और बड़े बुजुर्गों ने कहा भी है कि किसी के दो चार लक्षण जान लो फिर वो इंसान कैसा है मालूम पड़ जाता है। फिर एक खांसी के लक्षण को हम कैसे नकार कर उसे टीबी में बदलने का मौका दे देते हैं बताइए। देखिए, सिर्फ 5 बातें ही तो याद रखनी है आपको। 2 हफ्ते से लगातार खांसी, बुखार, रात में पसीना आना, भूख न लगना, वजन में लगातार गिरावट, इनका पता चलते ही टीबी की जांच कराइए। और सुनिए, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में ये जांच बिल्कुल मुफ्त है। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: ये संदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: शिशु के 6 महीने के होने के बाद
2: ठान लो ये बात,
1: 5 खाद्य समूहों का मेल
2: कर देगा सभी बीमारियों को फेल।
1: जो ना खिलाया बच्चे को पौष्टिक आहार,
2: बच्चा हो सकता है बीमार।
1: शिशु को 2 से 3 चम्मच मसला हुआ खाना खिलाएं।
2: शारीरिक और मानसिक रूप से अपने बच्चे को स्वस्थ बनाएं।
3: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
4: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्ते क्लास, टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा, क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
2: जी
1: प्लीज बताइए, आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
2: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है। दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल। साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी। उपचार चल सकता है और भी लंबा।
1: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
4: बिल्कुल सोचा है पापा।
3: क्या सोचा है?
4: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
3: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
4: जी पापा।
3: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
4: हाँ पापा बिल्कुल।
5: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
6: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।